नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बहुत ऊंचे, सीधे और बर्फीले पहाड़ की चढ़ाई देखी है? यह ऐसा पहाड़ जहां पगडंडी इतनी संकरी और फिसलन भरी हो कि उस पर एक छोटी सी चींटी भी अगर चढ़ने की कोशिश करें तो उसके भी नन्हे नन्हे पैर फिसल जाते हैं और वह नीचे आ गिरती हैं। उस बीहड़ और खतरनाक चोटी पर केवल वही पहुंच सकता है जो अपने पूरे शरीर को हल्का कर ले, जिसके पास रत्ती भर भी फालतू सामान का बोझ नहीं है। जरा सोचिए, उस फिसलन भरी पहाड़ी पर अगर कुछ लोग भारी भरकम गाड़ियों और बैलों के ऊपर सामान की बड़ी बड़ी बोरियां लाद कर चढ़ने की जिद करने लगे तो क्या होगा? वे बैल और गाड़ियां उस संकरे रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी और सीधे खाई में जा गिरेंगी। अध्यात्म और भक्ति का जो सर्वोच्च शिखर है, वह भी ठीक वैसे ही सूक्ष्म और खड़ी चढ़ाई है, लेकिन अज्ञानी लोग वहां अपने भारी अहंकार और कर्मकांड के बैल हाँकना चाहते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी नासमझी का दर्शन करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। जन कबीर का शीशर घर, घाट सलेली सैल, पावन टीके पीपली का, लोगनी लादे बैल। जन कबीर का शीशर घर, बाट सलेली सैल, जन कबीर का शीशर घर,

हेल श्रोताओं, कबीर साहब अपनी आध्यात्मिक स्थिति और उस परम पद की ऊंचाई का वर्णन करते हुए कहते हैं, जन कबीर का शीशर घर, इस प्रभु भक्त जन कबीर का असली निवास स्थान कोई जमीन झोपड़ी नहीं, बल्कि चेतना के उस सर्वोच्च शिखर यानी सहस्रार और शून्य शिखर के महल में है। बाट सलैली सैल, लेकिन उस परम धाम तक पहुंचने की जो बाट यानी पगडंडी है, वह सैल यानी कठोर पर्वतों के बीच अत्यंत सलैली यानी बेहद संकरी, सीधी और फिसलन भरी है। उस मार्ग की सूक्ष्मता का आलम क्या है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, पाँव न टीके पीपली का, वह रास्ता इतना सूक्ष्म और दुर्गम है कि उस पर एक अत्यंत हल्की और छोटी पीपलिका यानी चींटी के भी पाँव नहीं टिकते, वह भी संतुलन खोकर फिसल जाती हैं। लोगनी लादे बैल, और अफसोस की इस बात का है कि इस दुनिया में अज्ञानी लोग यानी मनुष्य उस बारीक मार्ग पर अपने पाखंड, आडंबर, भारी भरकम कर्मकांड और अहंकार रूपी बैल लाद लाद कर चढ़ने का पागलपन कर रहे हैं। यह दोहा हठयोग के शून्य शिखर और अद्वैत चेतना की पराकाष्ठा है। शीशर घर यानी हमारे अंतस के उस उच्चतम केंद्र का प्रतीक है, जहाँ केवल शुद्ध, निर्विचार और निर्भार चेतना ही पहुँच सकती है। पीपली का पाँव न टिकना इस बात का संकेत है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार या थोड़ी सी साधना की मैं वहाँ फिसल जाती हैं। लादे बैल उन बाहरी धार्मिक आडंबरों, पोथियों के भारी ज्ञान और सामाजिक संकीर्णताओं के प्रतीक हैं, जिन्हें लोग मुक्ति का साधन मान बैठते हैं। कबीर समझा रहे हैं कि जहाँ चींटी जैसी सूक्ष्मता भी मुश्किल से टिकती हैं, वहाँ भारी भरकम अहंकार और कर्मकांड का बोझ लेकर भला कोई कैसे पहुँच सकता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी पूजा, अपनी साधना और अपने धार्मिक विश्वासों को टटोलिए। क्या हम भी उस परम परमात्मा के दरबार में जाने के लिए अपने साथ अहंकार, पद, प्रतिष्ठा और बाहरी दिखावे के भारी बैल लेकर नहीं चल रहे हैं? हम सोचते हैं कि बहुत सारा दान देकर, बड़े बड़े अनुष्ठान करके या खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाकर हम ईश्वर को पा लेंगे। आज कोशिश कीजिए अपने इस भारी बोझ को उतार फेंकने की। उस संकरे और फिसल भरे मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल हल्के, सरल और निष्कपट बन जाइए। अपनी सारी अहंता को उस राम नाम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब आपका मन चींटी से भी ज़्यादा हल्का और शून्य हो जाएगा, तभी आप चेतना के उस परम शिखर पर पहुंचकर उस अखंड आनंद का अनुभव कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप हैं, यानी कि जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे और तभी जिंदगी मुश्किल लग रही थी। हमने ये देखा कि जो थॉट्स, जो विचार हम क्रिएट कर रहे हैं, विचारों के साथ जो फीलिंग्स हम क्रिएट कर रही हैं, वो हमारे बॉडी के कितने हिस्सों पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस कहकर अभी तक हमने अपनी दिनचर्या को, अपनी जो जिंदगी जीने का तरीका है उसको परिवर्तित किया था, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। आज जानते हैं कि अगर बीमारियां हैं तो क्या थॉट्स पर काम करने से, फीलिंग्स पर काम करने से हीलिंग संभव है। हमारे साथ हर बार की तरह है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बहुत बड़ा, हमें एक कहा जाए एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ ये रियलाइजेशन कि ये जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेरी बॉडी के हर पार्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं। अब रिवर्सल की बात करते हैं, पिछली बार भी मैंने बात की थी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूछें क्या अब जो बीमारी है, जो आ गई है, चाहे वो बच्चों में ही है या बड़ों में या बुजुर्गों में भी, वो थॉट पैटर्न से या फीलिंग को चेंज करके हम बदल पाएंगे?
1: डेफिनेटली बदल पाएंगे। और आज हम विज्ञान को स्वीकार करते हैं, आम व्यक्ति जो रिसर्च को नहीं जानता है वह भी जो डॉक्टर कहते हैं उसे स्वीकार करता है। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च भी हुई है, एक रिसर्च की भी जिससे बहुत लोगों पर भी इफेक्ट होगी। कार्ल ओ साइमोंटन अमेरिकन आर्मी में कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उनकी पत्नी साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने ये बातें सुनी थी कि इमोशंस की इफेक्ट होती है हेल्थ पर, इमोशंस के द्वारा हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया, क्योंकि आज मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी बात को स्वीकार करने के लिए हम एक दो एग्जांपल दे तो डॉक्टर स्वीकार नहीं करते,
0: साइंटिफिक अगर हम बता पाएंगे।
1: उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कैसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है, कितने पेशेंट होने चाहिए, उन पर क्या क्या टेस्ट करनी आवश्यक है। ऐसा उन्होंने करीब 122 कैंसर के पेशेंट्स थे उनको ठीक से चुना और उनके ऊपर ये रिसर्च की। बल ये पूरी एक टोटल रिसर्च थी जिसमें सिर्फ इमोशंस की ही बात नहीं थी, उनको वेजिटेरियन डाइट भी दिया गया जिसमें फाइबर ज़्यादा थे, फ्रूट्स थे, ऐसे ही एक्सरसाइज करने को भी कहा, और साथ साथ उनका मेन फोकस इन इमोशंस पर था कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात, उसमें उन्हें विजुअलाइजेशन भी सिखाया गया, क्योंकि बुद्धि है वो चित्र की भाषा समझती है। तो एक एक मरीज के साथ उन्होंने काम किया, उनको चित्र बनाना सिखाया कि किस प्रकार से तुम इस बीमारी को रिवर्सल करो, थॉट्स भी बताए कि कौन से विचार करो कि जिसके द्वारा भी आप इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और करीब 2 साल के बाद जब इसके रिजल्ट सामने आए तो सचमुच अमेजिंग थे। ये देखा गया कि 122 में से करीब 20 पेशेंट्स का कैंसर समाप्त हो गया, जो बाय चांस नहीं हो सकता है।
0: दवाई साथ साथ चल रही थी,
1: हाँ, जो नॉर्मल दवाइयां थी वो चल रही थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी से या ऑपरेशन से कोई उनका सभी का कैंसर इतने परसेंटेज में ठीक नहीं हो सकता। अगर होता है तो लाख में एकाध पेशेंट हो सकता है कि जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कि भी अचानक कैंसर खत्म हो गया, परंतु 122 में से 20 पेशेंट का बिल्कुल कैंसर से वो रिकवर हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और करीब 45 पेशेंट्स थे जिनका कैंसर कम हुआ, समझो 2 इंच था तो 1 इंच हो गया, जो भी आश्चर्यकारक था। और जो दूसरे मरीज थे, भले उनकी मृत्यु हुई परंतु डॉक्टर ने जो कहा था उससे वो 2 गुना जी गए। डॉक्टर ने कहा था कि 6 मास ही जिंदा रहोगे, वो 1 साल जिंदा रहे। और सभी मरीजों ने यह कहा कि पहले तो मर मर के जी रहे थे, कैंसर मतलब ही कैंसर, कि भी अभी हम जीने वाले नहीं हैं, परंतु जब ये प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, इन बातों को, इमोशंस को अच्छे से समझा, तो खुशी खुशी जीने लगे, हमारा आनंद का लेवल था वो काफी बढ़
0: गया। तो 1 साल कम से कम उनका खुशी वाला गुजरा।
1: हाँ, तो नो, दिस इज एन रियली साइंटिफिक रिसर्च विच प्रूव्स।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें तो यहाँ जो कुछ परसेंट डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कम्प्लीटली रिकवर कर गए, जो शायद अपने इमोशंस पे, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं कि अपने थॉट्स या इमोशंस को रिवर्स करने में भी तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है,
1: तो सब नहीं कर पाएंगे,
0: इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम कितने टाइम से अवेकनिंग में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स पर काम कर पाएं, और हर बार हमें जो है चैलेंजेस आते हैं,
2: लेकिन हर बार हमें सक्सेस भी मिल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड उसका कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अगर सक्सेस मिल रही है तो एक बिलीफ सिस्टम तो पक्का हो जाए कि ये पॉसिबल है। यू नो, अब तक जो बिलीफ सिस्टम था कि नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा या मैं नहीं चेंज कर रहा, आज अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड सक्सेस मिल रही है, चाहे ये हो सकता है दो सिचुएशंस में मिल रही है, पांच में फेल हो रहे हैं, लेकिन दो में मिलना मतलब बाकी पांच में भी मिल सकती है। दैट इटसेल्फ विल मोटिवेट मी, यू नो, सेल्फ मोटिवेशन से ही हम इस जर्नी पर और आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे ही थोड़ी प्राप्ति होती है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेटर होता है कि अच्छा आज मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने तो कैसे बात की थी मेरे से। एंड देन मेनी पीपल से पहले जैसा अगर मैं होता तो मैं कर देता, आज मैंने नहीं किया, इसका मतलब सारा चेंज किसने लाया, मैंने लाया, वो तो वैसे ही है, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। देन इफ आई कैन डू इट वंस, आई कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नाउ इट्स ओनली अबाउट अटेंशन। तो ईच वन इज ऑन द जर्नी, लेकिन जो उसको जितना अटेंशन से कर रहा है उसको उतना रिजल्ट मिलेगा।
1: इन दिस परसेंटेज बहुत बड़ा है, जैसे 22 लोग कहे तो अप्रोक्सीमेटली 15% हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। अगर 15% लोग कैंसर को क्योर कर सके तो भी वो बहुत बड़ी बात है। बल उसके लिए सिस्टमेटिकली अपने इमोशंस पर काम करना होगा, कोई मैजिक नहीं है।
0: तो अब हम बात करें कि काम कैसे करना है, बिकॉज बार बार हम यही कहते हैं कि अनुभव, और इसमें तो जैसे हमने रिश्तों में देखा था, रिश्तों में ही हमने एकदम से देखा फर्क आता हुआ दिखा, मतलब मैंने गुड फील किया, मैंने अगर मेरे साथ कोई खराब रिश्ता चल रहा था, मैंने अगर वो नहीं क्रिएट किए थे पहले, तो धीरे धीरे ये भी दिखा महीने दो महीने के अंदर अंदर कि वो रिश्ता, वो लोग भी परिवर्तित होते गए।
2: एक्चुअली वो लोग परिवर्तित होते नहीं है, जरूरी नहीं है, रिश्ता परिवर्तन हो जाता है। क्यों रिश्ता परिवर्तन हो जाता है? मेरा उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, मेरा उनको ब्लेम करना बंद हो जाता है, अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आई स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, एंड इफ आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, आई फील ओके, दे आर नाइस, यू नो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव टू चेंज। एक्चुअली दिस कैन ऑल हैपन विदाउट द अदर पर्सन डूइंग एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी चेंज ना क्रिएट करे।
0: हम अपने ऑर्गन्स को ब्लेम करना भी बंद कर सकते हैं।
1: That's true, true. Yeah,
0: अभी तक
1: yeah.
0: हम यू नो यही कह रहे थे कि ये हार्ट ही प्रॉब्लम है, किडनीज ही खराब है, यू नो, या पेट ही खराब है।
1: नहीं, परफेक्ट, आई विल टेल यू इन डिटेल, थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन से बात करना सीखना चाहिए। मैं पूरा ये कराता हूँ।
0: अच्छा,
1: है ना, ऑर्गन से बात करो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो स्वीकार करो, बिकाओ हार्ट आई एम सॉरी, मैंने तेरे पे बहुत फोर्स डाला, तेरे पे मैंने अनड्यू नेगेटिव अत्याचार किया, कि गलत गलत खा के, एक्सरसाइज नहीं करके, इमोशंस ला करके, हार्ट को बोलो आई एम सॉरी, प्लीज हील मी, इट रियली वर्क्स, एंड रियली वी हैव सीन रिवर्सल टेकिंग प्लेस।
0: जैसे वो कहते हैं कि प्लांट्स को करते हैं,
2: हाँ, जैसे प्लांट्स के साथ जो प्यार से बात करेगा। बट इस केस में थोड़ा जैसे ही आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, यू नो, इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट, एक्चुअली यू आर फीलिंग बेटर ना, यू नो। अब आपसे अगर मैं सॉरी कहूँ, आप कितना टाइम लेंगे उस बात के लिए, वो तो आपकी प्रॉब्लम,
0: मैं तो अच्छा,
2: लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, तो आई फ्री माई सेल्फ ऑफ गिल्ट ऑफ द बर्डन, तो कितनी सारी इमोशंस मैंने रिलीव कर लिया, दैट वाज द पर्पस, कि अपनी इमोशंस को क्लीन कर लो तो प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी।
1: और वो एटम्स भी चेंज हो रहे हैं ना, नहीं, वाटर क्रिस्टल्स का हम सब ने सुना है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं इसी पानी के ऊपर इफेक्ट होती है, तो 90% इज वाटर ओनली, तो जब आप बात करते अपने आप से तो वो जो वाटर क्रिस्टल्स पर चेंज होगा तो ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट होगी, साथ साथ हर एटम पर भी इफेक्ट होगी, और भी जो सूक्ष्म अणु है, जो तत्व है, उन पर भी इफेक्ट होगी, और सचमुच हीलिंग हो सकती है।
0: तो आप कैसे प्रोसेस करें?
1: ये तो छोटी सी बात है, बहुत गहरी है, सभी एक्सेप्ट शायद न भी करे, लेकिन तीन लेवल पर काम करना चाहिए। एक तो है अपने विचारों पर कार्य करना है, दूसरा इमोशंस पर कार्य करना है, और तीसरा पिक्चराइजेशन पर, विजुअलाइजेशन पर, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह पिक्चर्स की भाषा को समझती है। तो पहले देखें कि थॉट्स पर क्या कार्य करें। तो थॉट्स तो ऐसे हो कि जो मेरे इमोशंस है उसके अनुरूप, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि शांति की आवश्यकता है लंग्स को, तो हम पीस के विचार करें, ये सिंपल भी कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम फुल ऑफ पीस, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है। अलग अलग रूप से शांति की गहराई में जाने की कोशिश करिए। यह भी एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि परम धाम जो मुझ आत्मा का घर है वही शांति धाम है, वहां संपूर्ण शांति है। ऐसे ही समझो कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो प्यार के विचार करो
0: कि परमात्मा मुझसे इतना प्रेम करता है।
1: हाँ, ये भी मैं आत्मा प्रेम स्वरूप तो हूं ही, परंतु परमात्मा मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे बिना कोई शर्त के प्यार दे रहे हैं, और मुझे सचमुच सर्व संबंधों का प्यार परमात्मा से ही मिल रहा है। भले मैं अपने संबंधों को भी इम्प्रूव कर रहा हूं, परंतु जो एक्सपेक्टेशन है वो प्यार की परमात्मा से ही है, कोई संबंधों से मैं प्यार का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही पेट की प्रॉब्लम है तो सुख के विचार करो। तो जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, वह सातों गुण अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से मिल जाए, एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भी सातों गुणों का भी अनुभव करो, क्योंकि सबको जरूरत तो है ही। और फिर एक स्पेसिफिक जो बीमारी है उसके अनुरूप उस गुण का गहराई से अनुभव करो, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे।
0: और जैसे आपने कहा था कि अगर डायबिटीज की बात है या थायराइड की बात है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो उससे सिक्रीशन से ज्यादा या कम से तब हो रहे हैं, तो उसमें कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें?
1: हाँ, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो हमने देखा कि डायबिटीज का लोभ से संबंध हो सकता है, तो बोल उसके अनुरूप भी कहीं एक्यूमुलेट करने की तो मेरे में बात नहीं है, मैं टोटली इससे फ्री हो जाऊं। और मैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको जनरल भी बताया वह बिल्कुल सत्य है, वह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आनंद चाहिए। आज है ना जो विकृतियां भी इतनी बड़ी है वो क्यों? क्योंकि लगता है कि भी विकारों से आनंद मिल रहा है, परंतु तो एक्साइटमेंट है और वहां भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही संबंध है। अगर योग के अभ्यास से सच्चा आनंद मिलने लगे, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो, तो ऑटोमेटिक एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हार्मनी में कार्य करने लगेगी।
0: तो शिवानी, ये जो अभी बोला मेडिटेशन ही वो माध्यम लगता है जो हम इन सारे सातों जो गुण हैं उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग जो बैठते हैं उसमें स्पेसिफिक हम इन गुणों पर फोकस करें।
2: आई थिंक हर रोज हम एक गुण को ले सकते हैं, 7 days ऑफ द वीक 7 qualities, क्योंकि उस गुण को सिर्फ बोलना नहीं है ना, ये तो अब जैसे मंत्र की तरह तो है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। उस क्वालिटी को लेना है, उसको एक्सपीरियंस करना है और उस एनर्जी को अपनी बॉडी को भी देना है। और 5-10 minutes ही हम बैठते हैं अभी शुरू में, वी आर नॉट एबल टू सिट मोर देन दैट। तो एक क्वालिटी को ले लेते हैं, एक क्वालिटी हर रोज के लिए, और उस थॉट को सिर्फ बोले नहीं लेकिन उसको बिलीव करें, बिकॉज परमात्मा ने हमें बताया है कि दिस इज माई ट्रू नेचर, एंड मुझे भी मालूम है कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, सो येस दैन दिस इज माई ट्रू नेचर। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं आई डोंट थिंक आई एम अ पीसफुल सोल, मतलब मैं तो सारा दिन इतना परेशान और गुस्सा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं पीसफुल सोल हूँ। तो ये अपने आप को कहने से Am I cheating myself?
0: झूठ तो नहीं बोला, यही मैं कह
2: रहा हूँ। क्या मैं अपने आप को एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल? तो वो झूठ नहीं है, वो एक सत्यता है जो भूल चुकी है। एक किसी को अगर अपनी याददाश्त चली जाए तो उसको कैसे याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो? तो उसको बार बार यही कहा जाता है ना, आपको पता है आप ये हो, आप ये हो। तो अब ये मैं भूल गई हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ही अपने आप को अब याद दिलाना है। दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, कि मेडिटेशन से दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। और उससे क्या हो रहा है, वो थॉट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है, एंड बार बार वो थॉट पैटर्न क्रिएट होने से मेरा संस्कार जो है ओरिजिनल, इट इज री इमर्जिंग। तो आई थिंक लेट्स टेक इट अप एज अ चार्ट कि हर रोज एक क्वालिटी पे, और फिर अगर विशेष कोई बीमारी है तो उस पर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अटेंशन रख के। बट ये कितना अच्छा लग रहा है कि अगर हम सातों क्वालिटीज के ऊपर वर्क करें तो फिजिकली द एंटायर बॉडी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी।
1: आत्मा को पता है कि भी कौन सी बात, कौन से इमोशन के कारण मुझे बीमारी हुई है, भल हम जागृत रूप से नहीं जानते, और फिर उस पर गहराई से कार्य करो
0: कि वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्या पूरा प्रोसेस है कि मैं वो फीलिंग क्रिएट करता हूँ।
1: या तो कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, ये बीमारियों के पीछे एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आत्मा में, जैसे भी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, तो मैं समझता हूँ आत्मा में भी बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ भी फोल्डर्स भी है, आत्मा में कई फोल्डर्स है कि भी जो फोल्डर में भी फाइल्स है, तो भी कहीं ऐसा फोल्डर है जहां वो नेगेटिव बात है कि भी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, समझो वो है आपके अंदर फोल्डर, और वो फोल्डर के अंदर और भी चीजें है और वो डिस्टर्ब कर रहा है। और कभी भी अचानक जब भी ऐसी कोई आप घटना देखते हैं और कुछ होता है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और वो ओपन हुआ वो एक्सपीरियंस आपके शरीर के ऑर्गन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा, तब आवश्यकता है उसको डिलीट करने की। अगर उससे हमने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया तो वो बीमारी की इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगी। तो एक तो उसे समझे, एक्सेप्ट करे, उस फोल्डर को ओपन भी करो यह है, और फिर योग के माध्यम से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। भले पूरा प्रोसेस है, लेकिन अच्छे से करो तो उस फोल्डर को आप पूरा डिलीट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक बात आपने कहा कि तीन चीजें आपने कही थी, वन इज थॉट का,
1: थॉट लेवल effect, पर हाँ,
0: एक है आपने कहा फीलिंग के लेवल पर, तीसरा आपने कहा विजुलाइज, वो कैसे करना है?
1: पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर्स आर वेरी वेरी डीप, कि पिक्चर्स कैसे क्रिएट करने के, कि जो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहते हैं, साइमन टॉन ने भी यही किया कि उन पेशेंट्स को समझाया कि भई ये बीमारी आपकी कैसे होती है। जैसे कैंसर के लिए उन्होंने बहुत एक सरल सी बात बताई कि जो कैंसर सेल्स है आपके, वो चूहे जैसे है।
0: अच्छा,
1: कि भी नहीं लाखों करोड़ों चूहे अंदर इकट्ठे हो गए।
0: मतलब
1: ही जस्ट एक्सप्लेन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। और आपकी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बिल्ली जैसे, जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स में पावर है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से पास होते हैं, दे आर बिकमिंग सो पावरफुल कि कुछ वो कैंसर सेल्स को समाप्त कर देते हैं। और डे बाय डे आपका वो कैंसर छोटा छोटा छोटा होता जा रहा है,
0: चूहों की जो तादाद है वो कम
1: वो कम कम कम।
0: ओह, ये विजुलाइज करना कि एक बिल्ली चूहों को खा रही है,
1: इट्स समथिंग एल्स।
2: इसे भी आप विजुलाइज द व्हाइट ब्लड सेल ईटिंग द कैंसर,
1: दैट्स ओके,
2: ट्यूमर है,
0: व्हाइट से ब्लैक को खाता हुआ,
2: हां ये ट्यूमर है, आप अपने ट्यूमर को विजुलाइज कर लो, और ये विजुलाइज करो कि माय ब्लड सेल्स आर ईटिंग अप दैट ट्यूमर, सो बी एबल टू डू विजुलाइज।
1: जैसे आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा था कि नॉट कंफर्टेबल नो विजुलाइजिंग This. तो ऐसे कहीं हो सकते कि भी एक विजुअलाइजेशन के लिए व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है। कार्लो साइमन टॉन ने भी यही कहा कि आप अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करो, यहाँ तक कि हर एक पेशेंट को कहा आप चित्र भी बनाइए, भले आप चित्रकार नहीं भी है, परंतु आप अपना कुछ भी सिंपल लाइन डायग्राम भी बनाइए और उसको तो बार बार रिपीट करो।
2: एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कहा कि आप विजुलाइज करो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अब वीडियो गेम में आप कैसे कंसंट्रेट करते हो, मुझे मारना है, मुझे मारना, यू नो हाउ दे प्ले दैट, ही सेड देयर आर दीस हु आर रोमिंग अराउंड इन योर बॉडी एंड यू बिकम एंड प्ले द वीडियो गेम विद योर थॉट्स, यू हैव टू किल ऑल दीस पीपल। द चाइल्ड केम आउट ऑफ हिज इलनेस।
1: या वंडरफुल, नो इट्स, नो इट्स, दिस इज अ केस ऑफ ब्रेन कैंसर।
2: ये वीडियो गेम खेला क्योंकि वो बच्चा था, तो बच्चे को कैसी चीज दे, एंड वो ऑब्सेशन बन जाता है ना आपके साथ वीडियो। ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट थिंग,
0: आपको तो विन करना ही है, यू नो, यू हैव टू,
2: सो ही वाज एबल टू कम ओवर दैट प्रॉब्लम।
1: और इवन देखो ये पूरा रियल स्टोरी शिवानी बंजो बता रहे हैं ना, जो बच्चे को ब्रेन में कैंसर था और उसको ये कहा कि अभी तुमको उसको मारना है, शूट करना है, और कहा कि बच्चे के लिए इजी है कि भी तुम वीडियो गेम खेलो, सबको खत्म करो। वो बच्चे ने सचमुच किया, वो बड़ा अच्छा उसका विजुअलाइजेशन था, वो परफेक्ट करता था। एक मास के बाद उसने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मुझे लगता है मेरे सब कैंसर सेल्स मर गए, और फिर जाके उसका स्कैनिंग किया तो इट वाज क्लियर। बच्चे को करते करते भी उसको कॉन्फिडेंस भी हो रहा है सचमुच।
0: अच्छा था तो वो करा,
1: मे बी विजुअलाइजेशन।
0: यहां हम बड़े हैं तो हमें बार बार ये डाउट होता है कि हम अपने आप को झूठ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग, इतनी बड़ी बीमारी है और हम ऐसे एक्टिंग करके कर सकते हैं क्या? ये हमें अपनी ताकत शायद
1: अपने आप चित्र भी निर्माण किए और फिर प्रैक्टिस की। कईयों के चित्र में ही आता था कि इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, जैसे साइमन टोन अपनी बुक में लिखते हैं कि भी एक पेशेंट को चित्र बनाने के लिए, तो उसने चित्र बनाया कि कैंसर सेल्स है ना वो राक्षस जैसे,
0: तो
1: और मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स छोटे छोटे है ना, कि भाई वो से लड़ रहे हैं, तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि पहले ही वो पिक्चराइजेशन में था कि भी मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स तो वीक है, वो राक्षस को नहीं मार सकते तो नहीं मरे।
0: तो कहीं मनोबल या कहीं कुछ डाउट, बहुत सेल्फ डाउट बहुत है,
1: मतलब नहीं, मेन चीज तो डाउट को दूर कर, यह समझ ले कि भी माइंड में जबरदस्त शक्ति
0: पावर
1: है, हाँ यह कुछ भी कर सकता है सचमुच।
2: जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की पावर बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना ईजियर हो जाता है। दैट इज वाई इट्स अ बिग यू नो डीप कनेक्शन बिटवीन कि हम मेडिटेशन करें, मन बुद्धि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वी विल बी एबल टू डू इट,
0: क्योंकि मन स्ट्रांग होता जाएगा फिर बहुत ज्यादा,
1: और क्लैरिटी। दूसरा भी पिक्चराइजेशन में जितना आप क्लियर विजुअलाइजेशन कर सको उतनी अच्छी इफेक्ट होगी। कुछ लोग कहते भी हम अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते, तो भी करते रहो, इवन सचमुच कलर डायग्राम ड्रॉ करो,
0: अच्छा।
1: उसको देखते रहो।
0: तो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तब कैसे
1: करें? अच्छा बताता हूँ, देखो हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर में है वो सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन, तो अगर ये सोचा जाए कि मेरी ब्लड वेसल्स है उनको ये सब नसें आ रही है और उन पर बहुत प्रेशर है, उस पर प्रेशर आ रहा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बहुत आ रही, इसलिए नसें छोटी हो गई, उस पर प्रेशर आ गया और अब ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब ये चित्र निर्माण करो कि वो जो प्रेशर है वो कम हो रहा है,
0: वो एक्सपैंड कर रही है,
1: क्योंकि मैं शांत हूँ, अब मैंने अपने इमोशंस को सही रूप से समझ लिया, आई एम रियली रिलैक्स्ड, और मैं रिलैक्स्ड हूँ, तो सिंपैथेटिक जो स्टिम्युलेशन है वो भी कम हो गया, वो एक साथ में 100 इम्पल्स आ रहे थे अभी 50 हो गए, और हो गए तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होने लगे, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर रिलैक्सिंग, माय ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, इट रियली हैपेंस।
0: जब ये हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर है हाई, तब ये अगर विजुलाइज करें तो इम्पैक्ट होता है,
1: तो इम्पैक्ट होगी, हाँ, इवन इमीडिएट तो इम्पैक्ट हो सकती है।
0: अच्छा, और डायबिटीज है अगर,
1: यहाँ नहीं है, हार्ट का ही देखो, अभी एक पेशेंट ने तो सचमुच एक डॉक्टर को करके दिखाया, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को, उसने ना करके दिखाया, उसने कहा देखो अभी आप देखो मेरी हार्ट रेट है वो 95 हो गई, फिर वो कुछ करता था उसकी हार्ट रेट हो जाती थी 82। डॉक्टर को आश्चर्य होता कि क्योंकि अपने थॉट से इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर एंड में पेशेंट को पूछा कि तुम करते क्या हो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भी तुम्हारे पास ये माइंड में पावर है, तुम जब चाहो तब हार्ट रेट को बढ़ा देते हो, जब चाहो तब कम कर देते हो। उसने कहा सिंपल बात है भी, मैंने समझा था कि भी मैं, मेरे जीवन की एक इवेंट है वो थी जिसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई थी, बहुत प्रेशर हुआ था, जब मैं उसको याद करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है, फिर मैं अपने ऐसे इवेंट्स है कि जिसमें मुझे सफलता मिली थी, प्राइज मिली थी, तो बस उसको याद करता मेरी हार्ट रेट कम हो जाती है। आई अंडरस्टूड वंस और ट्वाइस, और फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, तो आज जब चाहो तब मैं कर सकता हूँ। सो ऑल्दो दिस इज वन केस,
0: उस इवेंट में चले गए, विजुलाइज किया उस इवेंट को, एक्चुअली हम अनोइंगली कितनी बार तो कर रहे हैं।
2: लेकिन ज्यादातर हम कौन से इवेंट्स को विजुलाइज करते हैं,
0: दुख वाले थे, नेगेटिव थे, गलत थे,
2: तो देखो डैमेज कितनी बार, एक बार जब वो इवेंट हुआ और फिर जितनी बार उस इवेंट को याद किया उतनी बार डैमेज, तो एक बार नहीं डैमेज हुआ ना, कितनी बार डैमेज हो गया।
0: और अगर अभी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं,
1: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं सालों से इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और करीब 1500 जितने पेशेंट्स कि जिनमें डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास सर्जरी करानी ही पड़ेगी, और वो पेशेंट नहीं चाहते थे कि भी हम बाईपास कराए, वो चाहते थे कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन हो करके इसकी इफेक्ट हो सकती है क्या, तो ऐसे पेशेंट्स को 7 दिन के लिए वहाँ शांतिवन में रखते हैं, उनकी सारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, ये ढूंढते भी है, जो मैंने कहा ना कि कौन से इमोशंस है जिससे इफेक्ट हुई, उस इमोशंस को भी ढूंढते हैं, और साथ साथ ये विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, विशेष कराते भी है, प्रतिदिन उनको ग्रुप में विजुअलाइजेशन कराते, कुछ योगी भी सामने बैठते हैं और वो भी उनको वह पावर देते, एनर्जी देते, और पेशेंट अपने आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके पावरफुल रिजल्ट है, यहाँ तक कि वह डॉक्यूमेंटेड केसेस है। फिर से उनकी एंजियोग्राफीज की गई, और ये प्रूव हुआ कि सचमुच उनमें काफी रिवर्सल हो गया है। यहाँ तक कि जब कार्डियोलॉजिस्ट को भी वो एंजियोग्राफीज दिखाते हो तो उनको आश्चर्य होता है कि भाई इसी पेशेंट की एंजियोग्राफी है। सो दैट प्रूव्स दैट नो दोज रिजल्ट्स आर रियली वंडरफुल।
0: व्हाट आर द विजुअलाइजेशन?
1: ये विजुअलाइजेशन की जो चर्बी जम गई है वो कम हो रही है। एक तो सिंपल ही है कि भी मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ, परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है और आत्मा से जो है वो प्रकाश की किरण हार्ट पर पड़ती है और वो हार्ट की कोरोनरी ब्लड वेसल्स में जाती है और इतनी वो भले सूक्ष्म किरणें हैं बट दे आर रियली पावरफुल कॉन्सेंट्रेट वे में, हाँ लेजर रेस की तरह जा रही है और लेजर रेस की जा रही है तो धीरे धीरे वो चर्बी को पिघला देती है और जो ब्लॉक्स है वो कम हो रहा है।
2: इट्स लाइक जैसे पाइपलाइन ब्लॉक होते हैं
1: ना, तो कैसे
2: क्लीन करते हैं,
0: एक केमिकल भी कई बार डालते हैं,
2: पाइपलाइन को क्लीन करना है, दैट इज व्हाट वी विजुअलाइज कि ये किरणें अंदर जा रही हैं और वो जो सब कचरा जो जमा हुआ है उस पाइप के अंदर उसको क्लीन करती जा रही है। माई ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग, इट्स बिकमिंग स्मूथ, थॉट पैटर्न चेंज हुआ, विजुअलाइज किया, अमेजिंग रिजल्ट्स हैव कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इट्स जस्ट 7 days वहाँ जाकर करते हैं एंड जिसको ये प्रॉब्लम है और साथ में उनके फैमिली के एक मेंबर, मोस्टली स्पाउस जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बेसिकली जीवन के हर एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं उस 7 दिन में और फिर उनको वापस जाकर भी उस लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मेंटेन करके रखना है एंड 6 महीने के बाद उनके सारे टेस्ट और वो सब फिर से होते हैं। वेरी साइंटिफिकली डन प्रोजेक्ट।
0: सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, जिस तरह से एक, मतलब बार बार मैं यही कह रही हूँ लेकिन इट्स रियली ट्रू, मिरेकल लगता है कि आज बीमारियों से हम इतने घबराए हुए हैं और इतना पूरा वक्त एनर्जी उसी में निकल रही है। तो अगर ये संभव है, हमारे हाथ में है टेक्निक, हमारे हाथ में शक्ति है, तो हम उसको प्रयास को करें। आपके द्वारा हमें पता चल रही है चीज़ें। थैंक यू सो मच। मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स, जिंदगी की सारी स्किल्स सीखने के बावजूद अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। इन स्किल्स को हमारे साथ इस सफर में सीखें। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी,
1: एपिसोड 2, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
0: दोस्तों लीजिए, फिर आ गए हैं वही दिन वही बार जिसका हम बेसब्री से करते हैं इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ हर कोना हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सब का अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन ही नहीं उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में यह संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है स्वच्छ सुजल गांव अभियान की पुकार।
1: साथियों इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनाएंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज 1 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके डेफिकेशन फ्री ODF भारत बनाना था और फेज 2 में हर गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधक तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण

0: मुझे मालूम है ODF मतलब खुले में शौच मुक्त गांव, ओपन डेफिकेशन फ्री है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों में वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। ये हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और वहां की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। सही बताया ना?
1: बिल्कुल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचरे का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
0: इसमें ये सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
1: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे नहीं।
0: अच्छा, ये लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक 5.1 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदला जल प्रबंधन और 5.32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
1: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो मन भावन, और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी है। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की

0: और बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना।
1: ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो, बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है।
0: ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे, हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे, हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
2: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे से यह सारी बातें आप लोगों तक पहुंचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
3: और एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दूषिका भी बहुत फेमस हो चुके हैं।
2: अच्छा, कैसे?
3: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
2: अच्छा, कहाँ?
3: चलो तुमको रामदेववाड़ी गांव की कहानी सुनाती हूँ, वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वो सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामदेवाड़ी गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत। आइए सुनते हैं दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

0: आ गई वे दूषिका, गांव की नालियों और कूड़े में ढेर से निकाल कर कभी निष्क्रिय शौचालयों में, कभी गंदे घरों में मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां शौचालय बनते हैं, बनते तो है मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, वही तो बसती हूं मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्क्रिय शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
1: घर में शौचालय तो है पर नल की टूटी खराब हुई है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दे लेकिन सुनते ही नहीं है। शौचालय ना हो पर तो क्या हमें फिर से खेती में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: ये है मेरी एक और जीत।
2: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय है और वे लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से भी शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए।
3: गांव वाले गांव में गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाना कूड़ेदान का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
4: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गांव में जल भराव कर रहे हैं।
0: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं रखते, उनके रखरखाव का ध्यान नहीं रखते और गांव में कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ादान का भी प्रयोग नहीं करते।
2: एक दिन गांव एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर, आंखों में एक भारत के निर्माण का सपना लिए सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
3: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है भाई? सब इतने दुखी क्यों हैं और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
5: कौन है जी, कौन है पता नहीं। हाँ कौन है पता नहीं, मुझे क्या पता क्या है, कौन बोल रहा है?
4: लगता है जैसे इनको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो
6: सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको को तो कुछ पता ही नहीं है।
3: सब समझ गया चाची, सब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण है अस्वच्छता।
0: मैं हूँ इन सब का कारण, बोलो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। हाँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
3: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारी किया धरा है। अब मैं सब समझ गया, देखो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा कैसे सफाया करता हूँ।
0: मेरा सफाया? मेरा सफाया क्यों करोगे? मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालयों का रखरखाव नहीं रखते, गीले कचरे सूखे कचरे के बीच अंतर नहीं जानते, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे सभी लोग पर मैं राज करती हूँ, उनका यही लापरवाही मेरी जीत है। लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजल।
3: दूषिका तुम गलत हो, यह काम अभी भी हो रहे हैं और हमारे गांव की जनता को समझा है। वह स्वच्छता को कायम रखने के लिए, शौचालय के रखरखाव, गांव की स्वच्छता के लिए, गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय कराती रहती है। हाँ, सब्जी प्रदूषिका।
0: हाँ, समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है, लेकिन गंदला पानी तथा मलीय कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी काफी समय लगेगा।
5: दूषिका, गंदला जल प्रबंधन और गलीय कचरा प्रबंधन भी सभी गांव में विभिन्न माध्यम जैसे सोखता गड्ढा घर और सामुदायिक स्तर पर वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड, डीवेट्स और फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे संरचनाओं के से की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी।
1: सुजल और वे स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बूढ़ों से मिलता समझाता है।
3: शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी माताओं बहनों बेटियों की गरिमा है। यह हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाता है। ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों के शौचालयों का रखरखाव और उनकी सफाई करना, मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदला जल का निपटान भी हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वच्छ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय की नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होके सामुदायिक शौचालयों का भी रखरखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदला जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था। लोग इस दिशा में काम करने लगे। दूषिका बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर देखती है।
0: अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां साफ कर दी है क्या? ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? गंदला जल नहीं फैला? अरे अरे अरे अरे, ये गांव में सब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छिका।
5: गांववासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वही रहती हूँ मैं स्वच्छिका।
1: अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है।

0: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को तो कहा था।
1: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उसमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छाट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोता के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन। करण पाटिल, जो कि जलगांव के ग्रामीण भाग से है, उन्होंने पहला उनका स्लोगन है स्वच्छ गांव स्वच्छ जीवन, यही है खुशहाली का सच्चा कारण।
1: वाह वाह।
0: और दूसरा जो स्लोगन है वो भेजा है प्राजक्ता बहिरम ने, और वो अमल ने ऐसे लिखती है, और स्लोगन है घर घर का हो एक ही नारा, स्वच्छ और सुंदर हो गांव हमारा।
1: क्या बात है।
0: और तीसरा स्लोगन है जो कि है ग्रीष्मा पाठक नशीराबाद से, उन्होंने भेजा है कचरा डिब्बे में डाले सभी, स्वच्छ गांव की जिम्मेदारी निभाए सभी।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छे। वाह, ये तो बड़ा अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं। हमारे श्रोताओं को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है, और उन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं?
1: तो भेजिए जल्दी से जवाब। सही जवाब भेजने वालों के नाम शामिल होंगे अगले अंक में। हमारा नंबर है 9284994933।
0: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे, और वह आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, ठोस और तरल अपरिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
1: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
0: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कलेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
1: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए। अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए खुश रहिए स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक के थैले को उपयोग न करें, यत्र तत्र कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत सुंदर भारत
0: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो मनभावन 90.8 FM। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बहुत ऊंचे, सीधे और बर्फीले पहाड़ की चढ़ाई देखी है? यह ऐसा पहाड़ जहां पगडंडी इतनी संकरी और फिसलन भरी हो कि उस पर एक छोटी सी चींटी भी अगर चढ़ने की कोशिश करें तो उसके भी नन्हे नन्हे पैर फिसल जाते हैं और वह नीचे आ गिरती हैं। उस बीहड़ और खतरनाक चोटी पर केवल वही पहुंच सकता है जो अपने पूरे शरीर को हल्का कर ले, जिसके पास रत्ती भर भी फालतू सामान का बोझ नहीं है। जरा सोचिए, उस फिसलन भरी पहाड़ी पर अगर कुछ लोग भारी भरकम गाड़ियों और बैलों के ऊपर सामान की बड़ी बड़ी बोरियां लाद कर चढ़ने की जिद करने लगे तो क्या होगा? वे बैल और गाड़ियां उस संकरे रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी और सीधे खाई में जा गिरेंगी। अध्यात्म और भक्ति का जो सर्वोच्च शिखर है, वह भी ठीक वैसे ही सूक्ष्म और खड़ी चढ़ाई है, लेकिन अज्ञानी लोग वहां अपने भारी अहंकार और कर्मकांड के बैल हांकना चाहते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी नासमझी का दर्शन करा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। जन कबीर का शीशर घर, घाट सलेली सैल, पावन टीके पीपली का, लोगनी लादे बैल। जन कबीर का शीशर घर, बाट सलेली सैल, जन कबीर का शीशर घर,

श्रोताओं, कबीर साहब अपनी आध्यात्मिक स्थिति और उस परम पद की ऊंचाई का वर्णन करते हुए कहते हैं, जन कबीर का शीशर घर। इस प्रभु भक्त जन कबीर का असली निवास स्थान कोई जमीन झोपड़ी नहीं, बल्कि चेतना के उस सर्वोच्च शिखर यानी सहस्रार और शून्य शिखर के महल में है। बाट सलैली सैल, लेकिन उस परम धाम तक पहुंचने की जो बाट यानी पगडंडी है, वह सैल यानी कठोर पर्वतों के बीच अत्यंत सलैली यानी बेहद संकरी, सीधी और फिसलन भरी है। उस मार्ग की सूक्ष्मता का आलम क्या है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, पावन टीके पीपली का। वह रास्ता इतना सूक्ष्म और दुर्गम है कि उस पर एक अत्यंत हल्की और छोटी पीपलिका यानी चींटी के भी पांव नहीं टिकते, वह भी संतुलन खोकर फिसल जाती हैं। लोगनी लादे बैल। और अफसोस की इस बात का है कि इस दुनिया में अज्ञानी लोग यानी मनुष्य उस बारीक मार्ग पर अपने पाखंड, आडंबर, भारी भरकम कर्मकांड और अहंकार रूपी बैल लाद लाद कर चढ़ने का पागलपन कर रहे हैं। यह दोहा हठयोग के शून्य शिखर और अद्वैत चेतना की पराकाष्ठा है। शीशर घर यानी हमारे अंतस के उस उच्चतम केंद्र का प्रतीक है, जहाँ केवल शुद्ध, निर्विचार और निर्भार चेतना ही पहुँच सकती है। पीपली का पावन टिकना इस बात का संकेत है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार या थोड़ी सी साधना की मैं वहाँ फिसल जाती हैं। लादे बैल उन बाहरी धार्मिक आडंबरों, पोथियों के भारी ज्ञान और सामाजिक संकीर्णताओं के प्रतीक हैं, जिन्हें लोग मुक्ति का साधन मान बैठते हैं। कबीर समझा रहे हैं कि जहाँ चींटी जैसी सूक्ष्मता भी मुश्किल से टिकती हैं, वहाँ भारी भरकम अहंकार और कर्मकांड का बोझ लेकर भला कोई कैसे पहुँच सकता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपनी पूजा, अपनी साधना और अपने धार्मिक विश्वासों को टटोलिए। क्या हम भी उस परम परमात्मा के दरबार में जाने के लिए अपने साथ अहंकार, पद, प्रतिष्ठा और बाहरी दिखावे के भारी बैल लेकर नहीं चल रहे हैं? हम सोचते हैं कि बहुत सारा दान देकर, बड़े बड़े अनुष्ठान करके या खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी दिखाकर हम ईश्वर को पा लेंगे। आज कोशिश कीजिए अपने इस भारी बोझ को उतार फेंकने की, उस संकरे और फिसल भरे मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल हल्के, सरल और निष्कपट बन जाइए। अपनी सारी अहंता को उस राम नाम के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब आपका मन चींटी से भी ज्यादा हल्का और शून्य हो जाएगा, तभी आप चेतना के उस परम शिखर पर पहुंचकर उस अखंड आनंद का अनुभव कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप हैं, यानी कि जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे और तभी जिंदगी मुश्किल लग रही थी। हमने ये देखा कि जो थॉट्स, जो विचार हम क्रिएट कर रहे हैं, विचारों के साथ जो फीलिंग्स हम क्रिएट कर रही हैं, वो हमारे बॉडी के कितने हिस्सों पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस कहकर अभी तक हमने अपनी दिनचर्या को, अपनी जो जिंदगी जीने का तरीका है उसको परिवर्तित किया था, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। आज जानते हैं कि अगर बीमारियां हैं, थॉट्स पर काम करने से, फीलिंग्स पर काम करने से हीलिंग संभव है। हमारे साथ हर बार की तरह है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बहुत बड़ा, हमें एक कहा जाए एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ ये रियलाइजेशन कि ये जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेरी बॉडी के हर पार्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं। अब रिवर्सल की बात करते हैं, पिछली बार भी मैंने बात की थी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूछें क्या अब जो बीमारी है, जो आ गई है, चाहे वो बच्चों में ही है या बड़ों में या बुजुर्गों में भी, वो थॉट पैटर्न से या फीलिंग को चेंज करके हम बदल पाएंगे?
2: डेफिनेटली बदल पाएंगे। और आज हम विज्ञान को स्वीकार करते हैं, आम व्यक्ति जो रिसर्च को नहीं जानता है वह भी जो डॉक्टर कहते उसे स्वीकार करता है। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च भी हुई है, एक रिसर्च की भी जिससे बहुत लोगों पर भी इफेक्ट होगी। कार्ल ओ साइमोंटन अमेरिकन आर्मी में कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उनकी पत्नी साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने ये बातें सुनी थी कि इमोशंस की इफेक्ट होती है हेल्थ पर, इमोशंस के द्वारा हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया, क्योंकि आज मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी बात को स्वीकार करने के लिए हम एक दो एग्जांपल दे तो डॉक्टर स्वीकार नहीं करते,
0: साइंटिफिक अगर हम बता पाएंगे।
2: उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कैसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है, कितने पेशेंट होने चाहिए, उन पर क्या क्या टेस्ट करनी आवश्यक है। ऐसा उन्होंने करीब 122 कैंसर के पेशेंट्स थे उनको ठीक से चुना और उनके ऊपर ये रिसर्च की। बल ये पूरी एक टोटल रिसर्च थी जिसमें सिर्फ इमोशंस की ही बात नहीं थी, उनको वेजिटेरियन डाइट भी दिया गया जिसमें फाइबर ज़्यादा थे, फ्रूट्स थे, ऐसे ही एक्सरसाइज करने को भी कहा, और साथ साथ उनका मेन फोकस इन इमोशंस पर था कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात, उसमें उन्हें विजुअलाइजेशन भी सिखाया गया, क्योंकि बुद्धि है वो चित्र की भाषा समझती है। तो एक एक मरीज के साथ उन्होंने काम किया, उनको चित्र बनाना सिखाया कि किस प्रकार से तुम इस बीमारी को रिवर्सल करो, थॉट्स भी बताए कि कौन से विचार करो कि जिसके द्वारा भी आप इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और करीब 2 साल के बाद जब इसके रिजल्ट सामने आए तो सचमुच अमेजिंग थे। ये देखा गया कि 122 में से करीब 20 पेशेंट्स का कैंसर समाप्त हो गया, जो बाय चांस नहीं हो सकता है।
0: दवाई साथ साथ चल रही थी,
2: हाँ, जो नॉर्मल दवाइयां थी वो चल रही थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भी कीमोथेरेपी से या ऑपरेशन से कोई उनका सभी का कैंसर इतने परसेंटेज में ठीक नहीं हो सकता। अगर होता है तो लाख में एकाध पेशेंट हो सकता है कि जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कि भी अचानक कैंसर खत्म हो गया, परंतु 122 में से 20 पेशेंट का बिल्कुल कैंसर से वो रिकवर हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और करीब 45 पेशेंट्स थे जिनका कैंसर कम हुआ, समझो 2 इंच था तो 1 इंच हो गया, जो भी आश्चर्यकारक था। और जो दूसरे मरीज थे, भले उनकी मृत्यु हुई परंतु डॉक्टर ने जो कहा था उससे वो 2 गुना जी गए। डॉक्टर ने कहा था कि 6 मास ही जिंदा रहोगे, वो 1 साल जिंदा रहे। और सभी मरीजों ने यह कहा कि पहले तो मर मर के जी रहे थे, कैंसर मतलब ही कैंसर, कि भी अभी हम जीने वाले नहीं हैं, परंतु जब ये प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, इन बातों को, इमोशंस को अच्छे से समझा, तो खुशी खुशी जीने लगे, हमारा आनंद का लेवल था वो काफी बढ़ गया।
0: तो 1 साल कम से कम उनका खुशी वाला गुजरा।
2: हाँ, तो नो, दिस इज एन रियली साइंटिफिक रिसर्च विच प्रूव्स।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें तो यहाँ जो कुछ परसेंट डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कम्प्लीटली रिकवर कर गए, जो शायद अपने इमोशंस पे, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं कि अपने थॉट्स या इमोशंस को रिवर्स करने में भी तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है,
2: तो सब नहीं कर पाएंगे,
0: इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम कितने टाइम से अवेकनिंग में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स पर काम कर पाए, और हर बार हमें जो है चैलेंजेस आते हैं,
1: लेकिन हर बार हमें सक्सेस भी मिल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड उसका कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अगर सक्सेस मिल रही है तो एक बिलीफ सिस्टम तो पक्का हो जाए कि ये पॉसिबल है। यू नो, अब तक जो बिलीफ सिस्टम था कि नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा या मैं नहीं चेंज कर रहा, आज अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड सक्सेस मिल रही है, चाहे ये हो सकता है दो सिचुएशंस में मिल रही है, पांच में फेल हो रहे हैं, लेकिन दो में मिलना मतलब बाकी पांच में भी मिल सकती है। दैट इटसेल्फ विल मोटिवेट मी, यू नो, सेल्फ मोटिवेशन से ही हम इस जर्नी पर और आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे ही थोड़ी प्राप्ति होती है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेटर होता है कि अच्छा आज मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने तो कैसे बात की थी मेरे से, एंड देन मेनी पीपल से पहले जैसा अगर मैं होता तो मैं कर देता, आज मैंने नहीं किया, इसका मतलब सारा चेंज किसने लाया, मैंने लाया, वो तो वैसे ही है, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, देन इफ आई कैन डू इट वंस आई कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नाउ इट्स ओनली अबाउट अटेंशन। तो ईच वन इज ऑन द जर्नी, लेकिन जो उसको जितना अटेंशन से कर रहा है उसको उतना रिजल्ट मिलेगा।
2: एंड दिस परसेंटेज बहुत बड़ा है, जैसे 22 लोग कहे तो अप्रोक्सीमेटली 15% हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। अगर 15% लोग कैंसर को क्योर कर सके तो भी वो बहुत बड़ी बात है, बल उसके लिए सिस्टमेटिकली अपने इमोशंस पर काम करना होगा, कोई मैजिक नहीं है।
0: तो अब हम बात करें कि काम कैसे करना है, बिकॉज बार बार हम यही कहते हैं कि अनुभव, और इसमें तो जैसे हमने रिश्तों में देखा था, रिश्तों में ही हमने एकदम से देखा फर्क आता हुआ दिखा, मतलब मैंने गुड फील किया, मैंने अगर मेरे साथ कोई खराब रिश्ता चल रहा था, मैंने अगर वो नहीं क्रिएट किए थे पहले, तो धीरे धीरे ये भी दिखा महीने दो महीने के अंदर अंदर कि वो रिश्ता, वो लोग भी परिवर्तित होते गए।
1: एक्चुअली वो लोग परिवर्तित होते नहीं है, जरूरी नहीं है, रिश्ता परिवर्तन हो जाता है। क्यों रिश्ता परिवर्तन हो जाता है? मेरा उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, मेरा उनको ब्लेम करना बंद हो जाता है, अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आई स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, एंड इफ आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल आई फील ओके, दे आर नाइस, यू नो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव टू चेंज। एक्चुअली दिस कैन ऑल हैपन विदाउट द अदर पर्सन डूइंग एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी चेंज ना क्रिएट करे।
0: हम अपने ऑर्गन्स को ब्लेम करना भी बंद कर सकते हैं।
2: That's true, true.
0: अभी तक हम यू नो यही कह रहे थे कि ये हार्ट ही प्रॉब्लम है, किडनीज ही खराब है, यू नो, या पेट ही खराब है।
2: नहीं, परफेक्ट, आई विल टेल यू इन डिटेल, थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन से बात करना सीखना चाहिए, मैं पूरा ये कराता हूँ।
0: अच्छा,
2: है ना, ऑर्गन से बात करो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो स्वीकार करो, बिकाओ हार्ट आई एम सॉरी, मैंने तेरे पे बहुत फोर्स डाला, नहीं? तेरे पे मैंने अनड्यू नेगेटिव अत्याचार किया, कि गलत गलत खा के, एक्सरसाइज नहीं करके, इमोशंस ला करके, हार्ट को बोलो आई एम सॉरी, प्लीज हील मी, इट रियली वर्क्स, एंड रियली वी हैव सीन रिवर्सल टेकिंग प्लेस।
0: जैसे वो कहते हैं कि प्लांट्स को करते हैं,
1: हाँ, जैसे प्लांट्स के साथ जो प्यार से बात करेगा, पर इस केस में थोड़ा जैसे ही आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, यू नो, इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट, एक्चुअली यू आर फीलिंग बेटर, यू नो, अब आपसे अगर मैं सॉरी कहूँ, आप कितना टाइम लेंगे उस बात के लिए, वो तो आपकी प्रॉब्लम,
0: मैं तो अच्छा,
1: लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, तो आई फ्री माई सेल्फ ऑफ गिल्ट ऑफ द बर्डन, तो कितनी सारी इमोशंस मैंने रिलीफ कर लिया, दैट वाज द पर्पस, कि अपनी इमोशंस को क्लीन कर लो तो प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी।
2: और वो एटम्स भी चेंज हो रहे हैं ना, नहीं, वाटर क्रिस्टल्स का हम सब ने सुना है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं ऐसे ही पानी के ऊपर इफेक्ट होती है, तो 90% इज वाटर ओनली, तो जब आप बात करते अपने आप से तो वो जो वाटर क्रिस्टल्स पर चेंज होगा तो ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट होगी, साथ साथ हर एटम पर भी इफेक्ट होगी, और भी जो सूक्ष्म अणु है, जो तत्व है, उन पर भी इफेक्ट होगी, और सचमुच हीलिंग हो सकती है।
0: तो आप कैसे प्रोसेस करें?
2: जो छोटी सी बात है, बहुत गहरी है, सभी एक्सेप्ट शायद न भी करे, लेकिन तीन लेवल पर काम करना चाहिए। एक तो है अपने विचारों पर कार्य करना है, दूसरा इमोशंस पर कार्य करना है, और तीसरा पिक्चराइजेशन पर, विजुअलाइजेशन पर, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह पिक्चर्स की भाषा को समझती है। तो पहले देखें कि थॉट्स पर क्या कार्य करें, तो थॉट्स तो ऐसे हो कि जो मेरे इमोशंस है उसके अनुरूप, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि शांति की आवश्यकता है लंग्स को, तो हम पीस के विचार करें, ये सिंपल भी कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम फुल ऑफ पीस, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है। अलग अलग रूप से शांति की गहराई में जाने की कोशिश करिए। यह भी एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि परम धाम जो मुझ आत्मा का घर है वही शांति धाम है, वहां संपूर्ण शांति है। ऐसे ही समझो कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो प्यार के विचार करो
0: कि परमात्मा मुझसे इतना प्रेम करता है।
2: ये भी मैं आत्मा प्रेम स्वरूप तो हूं ही, परंतु परमात्मा मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे बिना कोई शर्त के प्यार दे रहे हैं, और मुझे सचमुच सर्व संबंधों का प्यार परमात्मा से ही मिल रहा है। भले मैं अपने संबंधों को भी इम्प्रूव कर रहा हूं, परंतु जो एक्सपेक्टेशन है वो प्यार की परमात्मा से ही है, कोई संबंधों से मैं प्यार का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही पेट की प्रॉब्लम है तो सुख के विचार करो। तो जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, वह सातों गुण अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से मिल जाए, एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भी सातों गुणों का भी अनुभव करो, क्योंकि सबको जरूरत तो है ही। और फिर एक स्पेसिफिक जो बीमारी है उसके अनुरूप उस गुण का गहराई से अनुभव करो, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे।
0: और जैसे आपने कहा था कि अगर डायबिटीज की बात है या थायराइड की बात है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो उससे सिक्रीशन से ज्यादा या कम से तब हो रहे हैं, तो उसमें कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें?
2: हाँ, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो हमने देखा कि डायबिटीज का लोभ से संबंध हो सकता है, तो बोल उसके अनुरूप भी कहीं एक्यूमुलेट करने की तो मेरे में बात नहीं है, मैं टोटली इससे फ्री हो जाऊं। और मैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको जनरल भी बताया वह बिल्कुल सत्य है, वह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आनंद चाहिए। आज है ना जो विकृतियां भी इतनी बड़ी है, वो क्यों? क्योंकि लगता है कि भी विकारों से आनंद मिल रहा है, परंतु तो एक्साइटमेंट है, और वहां भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही संबंध है। अगर योग के अभ्यास से सच्चा आनंद मिलने लगे, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो, तो ऑटोमेटिक एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हार्मनी में कार्य करने लगेगी।
0: तो शिवानी, ये जो अभी बोला मेडिटेशन ही वो माध्यम लगता है जो हम इन सारे सातों जो गुण हैं उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग जो बैठते हैं उसमें स्पेसिफिक हम इन गुणों पर फोकस करें।
1: आई थिंक हर रोज हम एक गुण को ले सकते हैं, 7 days ऑफ द वीक 7 qualities, क्योंकि उस गुण को सिर्फ बोलना नहीं है ना, ये तो अब जैसे मंत्र की तरह तो है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। उस क्वालिटी को लेना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, और उस एनर्जी को अपनी बॉडी को भी देना है। और 5-10 minutes ही हम बैठते हैं अभी शुरू में, वी आर नॉट एबल टू सिट मोर देन दैट। तो एक क्वालिटी को ले लेते हैं, एक क्वालिटी हर रोज के लिए, और उस थॉट को सिर्फ बोले नहीं लेकिन उसको बिलीव करें, बिकॉज परमात्मा ने हमें बताया है कि दिस इज माई ट्रू नेचर, एंड मुझे भी मालूम है कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, सो येस दैन दिस इज माई ट्रू नेचर। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं आई डोंट थिंक आई एम अ पीसफुल सोल, मतलब मैं तो सारा दिन इतना परेशान और गुस्सा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं पीसफुल सोल हूँ। तो ये अपने आप को कहने से Am I cheating myself?
0: झूठ तो नहीं बोला, यही मैं कह
1: रहा हूँ। क्या मैं अपने आप को एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल? तो वो झूठ नहीं है, वो एक सत्यता है जो भूल चुकी है। एक किसी को अगर अपनी याददाश्त चली जाए तो उसको कैसे याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो? तो उसको बार बार यही कहा जाता है ना, आपको पता है आप ये हो, आप ये हो। तो अब ये मैं भूल गई हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ही अपने आप को अब याद दिलाना है। दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, कि मेडिटेशन से दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। और उससे क्या हो रहा है, वो थॉट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है, एंड बार बार वो थॉट पैटर्न क्रिएट होने से मेरा संस्कार जो है ओरिजिनल, इट इज री इमर्जिंग। तो आई थिंक लेट्स टेक इट अप एज अ चार्ट कि हर रोज एक क्वालिटी पे, और फिर अगर विशेष कोई बीमारी है तो उस पर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अटेंशन रख के। बट ये कितना अच्छा लग रहा है कि अगर हम सातों क्वालिटीज के ऊपर वर्क करें तो फिजिकली द एंटायर बॉडी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी।
2: आत्मा को पता है कि भी कौन सी बात, कौन से इमोशन के कारण मुझे बीमारी हुई है, भल हम जागृत रूप से नहीं जानते, और फिर उस पर गहराई से कार्य करो
0: कि वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्या पूरा प्रोसेस है कि मैं वो फीलिंग क्रिएट करता हूँ।
2: या तो कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, बीमारियों के पीछे एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आत्मा में जैसे भी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, तो मैं समझता हूँ आत्मा में भी बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ भी फोल्डर्स भी है, आत्मा में कई फोल्डर्स है कि भी जो फोल्डर में भी फाइल्स है, तो भी कहीं ऐसा फोल्डर है जहां वो नेगेटिव बात है कि भी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, समझो वो है आपके अंदर फोल्डर, और वो फोल्डर के अंदर और भी चीजें है और वो डिस्टर्ब कर रहा है। और कभी भी अचानक जब भी ऐसी कोई आप घटना देखते हैं और कुछ होता है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और वो ओपन हुआ वो एक्सपीरियंस आपके शरीर के ऑर्गन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा, तब आवश्यकता है उसको डिलीट करने की। अगर उससे हमने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया तो वो बीमारी की इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगी। तो एक तो उसे समझे, एक्सेप्ट करे, उस फोल्डर को ओपन भी करो यह है, और फिर योग के माध्यम से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बल पूरा प्रोसेस है, लेकिन अच्छे से करो तो उस फोल्डर को आप पूरा डिलीट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक बात आपने कहा कि तीन चीजें आपने कही थी, वन इज थॉट का,
2: थॉट लेवल पर,
0: हाँ। एक है आपने कहा फीलिंग के लेवल पर, तीसरा आपने कहा विजुलाइज, वो कैसे करना है?
2: पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर्स आर वेरी वेरी डीप, कि पिक्चर्स कैसे क्रिएट करने के, कि जो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहते हैं, साइमन टॉन ने भी यही किया कि उन पेशेंट्स को समझाया कि भई ये बीमारी आपकी कैसे होती है। जैसे कैंसर के लिए उन्होंने बहुत एक सरल सी बात बताई कि जो कैंसर सेल्स है आपके वो चूहे जैसे है।
0: अच्छा,
2: कि भी नहीं लाखों करोड़ों चूहे अंदर इकट्ठे हो गए।
0: मतलब
2: ही जस्ट एक्सप्लेन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। और आपकी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बिल्ली जैसे, जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे वो व्हाइट ब्लड सेल्स में पावर है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से पास होते हैं, दे आर बिकमिंग सो पावरफुल कि कुछ वो कैंसर सेल्स को समाप्त कर देते हैं, और डे बाय डे आपका वो कैंसर छोटा छोटा छोटा होता जा रहा है।
0: चूहों की जो तादाद है वो कम
2: कम कम कम,
0: ये विजुलाइज करना कि एक बिल्ली चूहों को खा रही है,
2: इट्स समथिंग एल्स।
1: इससे भी आप प्रॉबली विजुलाइज द व्हाइट ब्लड सेल ईटिंग द कैंसर,
2: दैट्स ओके,
1: ट्यूमर है,
0: व्हाइट से ब्लैक को खाता हुआ,
1: हां ये ट्यूमर है, आप अपने ट्यूमर को विजुलाइज कर लो, और ये विजुलाइज करो कि माय ब्लड सेल्स आर ईटिंग अप दैट ट्यूमर। सो बी पीपल टू डू विजुलाइज,
2: जैसे आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा था कि नॉट कंफर्टेबल नो विजुलाइजिंग This. तो ऐसे कहीं हो सकते कि भी एक विजुअलाइजेशन के लिए व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है। कार्लो साइमन टॉन ने भी यही कहा कि आप अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करो, यहाँ तक कि हर एक पेशेंट को कहा आप चित्र भी बनाइए, भले आप चित्रकार नहीं भी है, परंतु आप अपना कुछ भी सिंपल लाइन डायग्राम भी बनाइए और उसको तो बार बार रिपीट करो।
1: एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कहा कि आप विजुलाइज करो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अब वीडियो गेम में आप कैसे कंसंट्रेट करते हो, मुझे मारना है मुझे मारना, यू नो हाउ दे प्ले दैट, ही सेड देयर आर दीस हु आर रोमिंग अराउंड इन योर बॉडी एंड यू बिकम एंड प्ले द वीडियो गेम विद योर थॉट्स, यू हैव टू किल ऑल दीस पीपल। The child came out of his illness.
2: Yeah, yeah, wonderful. No, it's this is a case of brain cancer.
1: आपके साथ वीडियो
2: रियल स्टोरी शिवानी बन जो बता रहे ना, जो बच्चे को ब्रेन में कैंसर था और उसको ये कहा कि अभी तुमको उसको मारना है, शूट करना है, और कहा कि बच्चे के लिए इजी है कि भी तुम वीडियो गेम खेलो, सबको खत्म करो। वो बच्चे ने सचमुच किया, वो बड़ा अच्छा उसका विजुअलाइजेशन था, वो परफेक्ट करता था। एक मास के बाद उसने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मुझे लगता है मेरे सब कैंसर सेल्स मर गए, और फिर जाके उसका स्कैनिंग किया तो इट वाज क्लियर। बच्चे को करते करते भी उसको कॉन्फिडेंस भी हो रहा है सचमुच।
0: अच्छा था तो वो करा,
2: मे बी विजुअलाइजेशन।
0: यहां हम बड़े हैं तो हमें बार बार ये डाउट होता है कि हम अपने आप को झूठ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग, इतनी बड़ी बीमारी है और हम ऐसे एक्टिंग करके कर सकते हैं क्या? ये हमें अपनी ताकत शायद नहीं
2: मालूम,
1: पावर ऑफ द माइंड नहीं मालूम।
0: इट लुक्स कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे खेल खेल रहे हैं क्या?
2: उसमें भी उन्होंने सचमुच देखा भी है सब पेशेंट्स में कि भी उन्होंने अपने आप चित्र भी निर्माण किए और फिर प्रैक्टिस की, कईयों के चित्र में ही आता था कि इट इज नॉट पॉसिबल,
0: है ना,
2: जैसे साइमन टोन अपनी बुक में लिखते हैं कि भी एक पेशेंट को चित्र बनाने के लिए, तो उसने चित्र बनाया कि कैंसर सेल्स है ना वो राक्षस जैसे,
0: तो
2: और मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स छोटे छोटे है, है ना, कि भाई वो से लड़ रहे हैं, तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि पहले ही वो पिक्चराइजेशन में था कि भी मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स तो वीक है, वो राक्षस को नहीं मार सकते, तो नहीं मरे।
0: तो कहीं मनोबल या कहीं कुछ डाउट, बहुत सेल्फ डाउट बहुत है,
2: मतलब नहीं, मेन चीज तो डाउट को दूर कर, यह समझ ले कि भी माइंड में जबरदस्त शक्ति
0: पावर
2: है, हाँ, यह कुछ भी कर सकता है सचमुच।
1: जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की पावर बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना ईजियर हो जाता है। दैट इज वाई इट्स अ बिग यू नो डीप कनेक्शन बिटवीन कि हम मेडिटेशन करें, मन बुद्धि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वी विल बी एबल टू डू इट,
0: क्योंकि मन स्ट्रांग होता जाएगा फिर बहुत ज्यादा,
2: और क्लैरिटी। दूसरा भी पिक्चराइजेशन में जितना आप क्लियर विजुअलाइजेशन कर सको उतनी अच्छी इफेक्ट होगी। कुछ लोग कहते भी हम अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते, तो भी करते रहो करते रहो, इवन सचमुच कलर डायग्राम ड्रॉ करो,
0: अच्छा।
2: उसको देखते रहो देखते रहो।
0: तो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तब कैसे करें?
2: अच्छा बताता हूँ, देखो हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर में है वो सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन, तो अगर ये सोचा जाए कि मेरी ब्लड वेसल्स है उनको ये सब नसें आ रही है और उन पर बहुत प्रेशर है, उस पर प्रेशर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बहुत आ रही, इसलिए नसें छोटी हो गई, उस पर प्रेशर आ गया और अब ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब ये चित्र निर्माण करो कि वो जो प्रेशर है वो कम हो रहा है,
0: वो एक्सपैंड कर रही है,
2: क्योंकि मैं शांत हूँ अब, मैंने अपने इमोशंस को सही रूप से समझ लिया, आई एम रियली रिलैक्स्ड, और मैं रिलैक्स्ड हूँ तो सिंपैथेटिक जो स्टिम्युलेशन है वो भी कम हो गया, वो एक साथ में 100 इम्पल्स आ रहे थे अभी 50 हो गए, और वो हो गए तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होने लगे, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर रिलैक्सिंग, माय ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, इट रियली हैपेंस।
0: जब ये हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर है हाई, तब ये अगर विजुलाइज करें तो इम्पैक्ट होता है,
2: तो इम्पैक्ट होगी, हाँ हाँ, इवन इमीडिएट तो इम्पैक्ट हो सकती है।
0: अच्छा, और डायबिटीज है अगर?
2: यहाँ नहीं है, हार्ट का ही देखो, अभी एक पेशेंट ने तो सचमुच एक डॉक्टर को करके दिखाया, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को उसने ना करके दिखाया, उसने कहा देखो अभी आप देखो मेरी हार्ट रेट है वो 95 हो गई, फिर वो कुछ करता था उसकी हार्ट रेट हो जाती थी 82। डॉक्टर को आश्चर्य होता कि क्योंकि अपने थॉट से इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर एंड में पेशेंट को पूछा कि तुम करते क्या हो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भी तुम्हारे पास ये माइंड में पावर है, तुम जब चाहो तब हार्ट रेट को बढ़ा देते हो, जब चाहो तब कम कर देते हो। उसने कहा सिंपल बात है भी, मैंने समझा था कि भी मैं मेरे जीवन की एक इवेंट है वो थी जिसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई थी, बहुत प्रेशर हुआ था, जब मैं उसको याद करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है, फिर मैं अपने ऐसे इवेंट्स है कि जिसमें मुझे सफलता मिली थी, प्राइज मिली थी, तो बस उसको याद करता मेरी हार्ट रेट कम हो जाती है। आई अंडरस्टूड वंस और ट्वाइस, और फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, तो आज जब चाहो तब मैं ये कर सकता
0: हूँ।
2: सो ऑल्दो दिस इज वन केस,
0: उस इवेंट में चले गए, विजुलाइज किया उस इवेंट को, एक्चुअली हम अननोइंगली कितनी बार तो कर रहे हैं,
2: कर रहे हैं, कर रहे हैं,
1: लेकिन ज्यादातर हम कौन से इवेंट्स को विजुलाइज करते हैं,
0: दुख वाले थे, नेगेटिव थे, गलत थे,
1: तो देखो डैमेज कितनी बार, एक बार जब वो इवेंट हुआ और फिर जितनी बार उस इवेंट को याद किया उतनी बार डैमेज, तो एक बार नहीं डैमेज हुआ ना, कितनी बार डैमेज हो गया।
0: और अगर अभी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं,
2: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं सालों से इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और करीब 1500 जितने पेशेंट्स कि जिनमें डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास सर्जरी करानी ही पड़ेगी, और वो पेशेंट नहीं चाहते थे कि भी हम बाईपास कराएं, वो चाहते थे कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन हो करके इसकी इफेक्ट हो सकती है क्या, तो ऐसे पेशेंट्स को 7 दिन के लिए वहाँ शांतिवन में रखते हैं, उनकी सारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, ये ढूंढते भी है, जो मैंने कहा ना कि कौन से इमोशंस है जिससे इफेक्ट हुई, उस इमोशंस को भी ढूंढते हैं, और साथ साथ ये विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, विशेष कराते भी है, प्रतिदिन उनको ग्रुप में विजुअलाइजेशन कराते, कुछ योगी भी सामने बैठते हैं और वो भी उनको वह पावर देते, एनर्जी देते, और पेशेंट अपने आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके पावरफुल रिजल्ट है, यहाँ तक कि वह डॉक्यूमेंटेड केसेस है। फिर से उनकी एंजियोग्राफीज की गई, और ये प्रूव हुआ कि सचमुच उनमें काफी रिवर्सल हो गया है। यहाँ तक कि जब कार्डियोलॉजिस्ट को भी वो एंजियोग्राफीज दिखाते हो तो उनको आश्चर्य होता है कि भाई इसी पेशेंट की एंजियोग्राफी है। सो दैट प्रूव्स दैट नो दोज रिजल्ट्स आर रियली वंडरफुल।
0: व्हाट आर द विजुअलाइजेशन?
2: ये विजुअलाइजेशन की जो चर्बी जम गई है वो कम हो रही है। एक तो सिंपल ही है कि भी मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ, परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है और आत्मा से जो है वो प्रकाश की किरण हार्ट पर पड़ती है और वो हार्ट की कोरोनरी ब्लड वेसल्स में जाती है और इतनी वो भले सूक्ष्म किरणें हैं बट दे आर रियली पावरफुल कॉन्सेंट्रेट वे में। हाँ, लेजर रेस की तरह जा रही है और लेजर रेस की जा रही है तो धीरे धीरे वो चर्बी को पिघला देती है और जो ब्लॉक्स है वो कम हो रहा है।
1: इट्स लाइक जैसे पाइपलाइन ब्लॉक होती है
2: ना, तो कैसे
1: क्लीन करते हैं,
0: एक केमिकल भी कई बार डालते हैं,
1: पाइपलाइन को क्लीन करना है। दैट इज व्हाट वी विजुअलाइज कि ये किरणें अंदर जा रही हैं और वो जो सब कचरा जो जमा हुआ है उस पाइप के अंदर उसको क्लीन करती जा रही है। माय ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग, इट्स बिकमिंग स्मूथ, थॉट पैटर्न चेंज हुआ, विजुअलाइज किया, अमेजिंग रिजल्ट्स हैव कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इट्स जस्ट 7 days वहां जाकर करते हैं एंड जिसको ये प्रॉब्लम है और साथ में उनके फैमिली के एक मेंबर, मोस्टली स्पाउस जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बेसिकली जीवन के हर एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं उस 7 दिन में और फिर उनको वापस जाकर भी उस लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मेंटेन करके रखना है एंड 6 महीने के बाद उनके सारे टेस्ट और वो सब फिर से होते हैं। वेरी साइंटिफिकली डन प्रोजेक्ट।
0: सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, जिस तरह से एक, मतलब बार बार मैं यही कह रही हूँ लेकिन इट्स रियली ट्रू, मिरेकल लगता है कि आज बीमारियों से हम इतने घबराए हुए हैं और इतना पूरा वक्त एनर्जी उसी में निकल रही है। तो अगर ये संभव है, हमारे हाथ में है टेक्निक, हमारे हाथ में शक्ति है, तो हम उसको प्रयास को करें। आपके द्वारा हमें पता चल रही है चीज़ें। थैंक यू सो मच। मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स, जिंदगी की सारी स्किल्स सीखने के बावजूद अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। इन स्किल्स को हमारे साथ इस सफर में सीखें। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी,
1: एपिसोड 2, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
0: दोस्तों लीजिए, फिर आ गए हैं वही दिन वही बार जिसका हम बेसब्री से करते हैं इंतजार।
1: आप सभी को स्वच्छिका और सुजल का सादर नमस्कार।
0: क्या है कि स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम देता है हमको शुद्ध विचार। हर तरफ हर कोना हर गांव में हो रहा है स्वच्छता का प्रचार।
1: दोहराना है हमें ये संकल्प और ये व्यवहार कि स्वच्छता ही है हम सब का अधिकार।
0: रखना है स्वच्छ हर घर का शौचालय इस बार। धोएंगे साबुन से हाथ खाने के पहले और शौच के बाद।
1: करेंगे सफाई से प्यार, करेंगे सबसे स्वच्छता की गुहार।
0: केवल मनोरंजन ही नहीं उद्देश्य है हमारा।
1: बैठ जाए हर मस्तिष्क में यह संकल्प कि स्वच्छता ही है एकमात्र विकल्प।
0: स्वस्थ तन और स्वस्थ मन में ही वास करते हैं सुविचार।
1: प्रण करें आज ही कि स्वच्छ सुजल करना है हमें हर गांव।
0: दूर हो जाएगी बीमारी अगर स्वच्छता की होगी वातावरण में बहार।
1: दूषिका भी भाग जाएगी अगर होगी आपके आसपास ऐसी बयार।
0: यही है स्वच्छ सुजल गांव अभियान की पुकार।
1: साथियों इन सब के सहारे ही होगी हमारी नैया पार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की पूरी जानकारी देंगे, विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की कहानियां सुनाएंगे और साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे इस योजना का उद्देश्य फेज 1 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शौचालय की सुविधा प्रदान करके डेफिकेशन फ्री ODF भारत बनाना था और फेज 2 में हर गांव को ODF प्लस मॉडल बनाना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधक तकनीक को स्थापित कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने तथा लोगों में व्यवहार परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है।
0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के पहले चरण में सरकार ने हर गांव के हर घर में शौचालय बनाने का संकल्प लिया था और स्वच्छिका तुमको याद है देश के सभी गांवों ने स्वयं को ODF घोषित किया था। अब यह ना कह देना कि ODF गांव क्या होता है।
1: अरे रे रे, ऐसे कैसे कह दूंगी, मुझे मालूम है। ODF मतलब खुले में शौच मुक्त गांव, ओपन डेफिकेशन फ्री है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग उन क्षेत्रों में वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां लोग अब खुले में शौच नहीं करते हैं बल्कि शौचालय का उपयोग करते हैं। ये हम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सुनिश्चित करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और वहां की महिलाओं की निजता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। सही बताया ना?
0: बिल्कुल, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में हमारे गांव ODF प्लस मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं। एक ODF प्लस मॉडल गांव वह होता है जो खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, ठोस एवं तरल कचरे का समुचित प्रबंधन कर रहा है तथा जहां स्वच्छता का स्तर उच्च हो और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा एवं जल का जमाव ना हो।
1: इसमें ये सुनिश्चित करना है कि गांव के सभी घरों के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय की सुविधा हो और सभी सार्वजनिक स्थानों और घरों में ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन हो।
0: लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए समुदाय की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है रेडियो के माध्यम से और आप लोगों को यह देखना जरूरी है कि इस मुहिम में कोई भी परिवार छूटे नहीं।
1: अच्छा, ये लेकिन मुझे ये पता है कि अब तक 5.1 लाख से ज्यादा गांव स्वयं को ODF प्लस मॉडल घोषित कर चुके हैं। इसके साथ 5.50 लाख से अधिक गांव में गंदला जल प्रबंधन और 5.5 32 लाख से अधिक गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर चुके हैं।
0: देश में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयास जारी है। हर गांव को साफ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना और हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है और हमारी आपकी सहभागिता इस महाअभियान में बनाकर रखना भी बहुत जरूरी है। तो सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो मन भावन, और उसमें सुनते रहिए ये कार्यक्रम
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जहां हर घर तक पहुंचेगी हमारी आवाज, हमारी बात। लेकिन फिलहाल इन सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच विशेषज्ञ उपस्थित हो चुकी है। चलिए पहले सुनते हैं उनकी बात।
2: नमस्कार साथियों, मैं ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रही हूँ। आज आप सभी से स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के जरिए जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में

0: ODF प्लस मॉडल गांव बनाना।
1: ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो, बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है।
0: ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
2: हमारी विशेषज्ञ ऐश्वर्या सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने कितने अच्छे से यह सारी बातें आप लोगों तक पहुँचाई। याद रखना है आपको और ये आपके क्षेत्र में कार्यान्वित हो, इसके लिए आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
3: और एक मजे की बात बताऊं सुजल, देश भर के 100 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड ही सुनने के बाद मैं स्वच्छिका और तुम सुजल साथ में दुशिका भी बहुत फेमस हो चुके हैं।
2: अच्छा, कैसे?
3: अलग अलग गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है।
2: अच्छा, कहाँ?
3: चलो तुमको रामदेववाड़ी गांव की कहानी सुनाती हूँ। वहाँ पर नुक्कड़ नाटक के रूप में क्या प्रस्तुत हो रहा है वो सुनवाती हूँ। वहाँ पर एक नाटक हो रहा है जिसका नाम है दूषिका की हार, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जीत।

कहते हैं जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी ताकत से खड़ी होती है। ये कहानी है रामदेवाड़ी गांव की, जहां स्वच्छता को गंदगी ने खुली चुनौती दी, जहां दूषिका ने फैलाया अंधेरा और स्वच्छिका ने जलाया स्वच्छता का दीपक, और सुजल कुमार बना उस रोशनी का स्वच्छता दूत। जानेंगे कैसे काम आई बुजुर्ग की नसीहत, आइए सुनते हैं दूषिका की हार

0: आ गई बे दूषिका, गांव की नालियों और कूड़े में ढेर से निकाल कर, कभी निष्क्रिय शौचालयों में, कभी गंदे घरों में, मेरा साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है। जहां शौचालय बनते हैं, बनते तो है मगर लापरवाही करने से निष्क्रिय हो जाते हैं, वही तो बसती हूं मैं। जो कहते हैं कल करेंगे साफ, उनको जल्द से जल्द मैं कर देती हूँ बीमार। गंदा और निष्क्रिय शौचालय मेरा आशियाना, फैला हुआ गंदा पानी और टूटा नल मेरा ठिकाना, मेरा काम सबको बीमार बनाना।
1: घर में शौचालय तो है पर नल की टूटी खराब हुई है। कितनी बार रमेश के पिताजी को कहा बनवा दे लेकिन सुनते ही नहीं है। शौचालय ना हो पर तो क्या हमें फिर से खेती में जाएंगे? नहीं नहीं, हमारा गांव तो ODF है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: ये है मेरी एक और जीत।
2: हमारे कुछ शौचालय निष्क्रिय है और वे लोग उनको ठीक नहीं करवा रहे हैं। इस वजह से भी शायद पिछले महीने 4 बच्चे बीमार पड़े थे। सरपंच जी कुछ कीजिए।
3: गांव वाले गांव में गंदगी भी फैला रहे हैं और गांव में लगाना कूड़ेदान का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
4: घर में जगह होने के बाद भी घरों के गंदे पानी से गांव में जल भराव कर रहे हैं।
0: बस ऐसे ही रहो, मुझे तुम सबका लापरवाह रवैया बहुत पसंद है। तुम खुद शौचालय साफ नहीं रखते, उनके रखरखाव का ध्यान नहीं रखते और गांव में कूड़ा इधर उधर फेंकते हो, कूड़ादान का भी प्रयोग नहीं करते।
2: एक दिन गांव एक युवा आत्मविश्वास से भरपूर, आंखों में एक भारत के निर्माण का सपना लिए सुजल कुमार अपने पड़ोस के गांव जाता है।
3: राम राम भैया, ये गांव में चारों ओर सन्नाटा क्यों है भाई? सब इतने दुखी क्यों हैं और इतनी गंदगी क्यों है भाई?
5: कौन है जी, कौन है पता नहीं। हाँ कौन है पता नहीं, मुझे क्या पता क्या कौन है, कौन बोल रहा है?
4: लगता है जैसे इनको तो कुछ पता ही नहीं। हाँ नहीं तो
5: सच कह रही हो बहन, बन तो ऐसे रहा है जैसे इसको तो कुछ पता ही नहीं है।
3: सब समझ गया चाची, सब समझ गया मैं। इस गांव में ये दुख और सन्नाटे का कारण है अस्वच्छता।
0: मैं हूँ इन सब का कारण, बोलो क्या करोगे तुम? बोलो बोलो। हाँ कुछ नहीं कर पाओगे तुम, कुछ दिन में तो तुम्हें भी अपना शिकार बना लूंगी, समझे?
3: अच्छा तो तुम हो दूषिका और ये सब तुम्हारी किया धरा है। अब मैं सब समझ गया, देखो मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा कैसे सफाया करता हूँ।
0: मेरा सफाया? मेरा सफाया क्यों करोगे? मैं तो उन गांव वालों को निशाना बनाती हूँ जो गंदगी फैलाते हैं, जो अपने शौचालयों का रखरखाव नहीं रखते, गीले कचरे सूखे कचरे के बीच अंतर नहीं जानते, जो ये भी नहीं जानते कि जैविक कचरा यानी घर की रसोई से निकलने वाले कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे सभी लोग पर मैं राज करती हूँ, उनका यही लापरवाही मेरी जीत है। लेकिन जनता को स्वच्छता के बारे में समझाने का काम तो तुम्हारा है सुजल।
3: दूषिका तुम गलत हो, यह काम अभी भी हो रहे हैं और हमारे गांव की जनता को समझा है। वह स्वच्छता को कायम रखने के लिए, शौचालय के रखरखाव, गांव की स्वच्छता के लिए, गीले सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जागरूकता अभियान भी समय समय कराती रहती है। सब्जी प्रदूषिका
0: समय के साथ जनता जागरूक होती जा रही है, लेकिन गंदा पानी तथा मलिय कचरा प्रबंधन को व्यापक रूप से अपनाने में अभी काफी समय लगेगा।
5: दूषिका, गंदा जल प्रबंधन और गलिय कचरा प्रबंधन भी सभी गांव में विभिन्न माध्यम जैसे सोखता गड्ढा घर और सामुदायिक स्तर पर वेस्ट स्टेबिलाईजेशन पॉन्ड, डीवैट्स और फेकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट जैसे संरचनाओं के से की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। देखना आने वाले दिनों में गांव की जनता कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटा देगी।
1: सुजल और वे स्वच्छता पर नुक्कड़ नाटक करता है, बच्चों को खेल खेल में सिखाता है, बूढ़ों से मिलता समझाता है। शौचालय सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये हमारी माताओं बहनों बेटियों की गरिमा है। यह हमें बीमारी से अस्वच्छता से बचाता है। ये है बीमारी से लड़ने का हथियार। अपने घरों के शौचालयों का रखरखाव और उनकी सफाई करना, मरम्मत करना घर वालों की जिम्मेदारी है। गांव को स्वच्छ रखने के लिए सही कचरा प्रबंधन और गंदला जल का निपटान भी हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। खुद भी स्वस्थ रहो और दूसरों को भी स्वच्छ रहने के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करो। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग प्रेरित होते हैं और शौचालय की नियमित सफाई शुरू करते हैं और गांव के लोग एकजुट होके सामुदायिक शौचालयों का भी रखरखाव शुरू करते हैं। इसी के साथ सुजल उनको सूखा कचरा प्रबंधन और गंदला जल प्रबंधन का अच्छा प्रभाव भी दिखाता है, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में सिखाया गया था। लोग इस दिशा में काम करने लगे। दूषिका बेचैन होती है, गांव की गली में छिपकर देखती है।
0: अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लोगों ने नालियां साफ कर दी है क्या? ये शौचालय का नल भी ठीक हो गया? दुर्गंध कहाँ गई? मच्छर कहाँ गए? गंदला जल नहीं फैला? अरे अरे अरे अरे, ये गांव में सब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
1: अब गांव में आती है उजली सी रोशनी के साथ स्वच्छ का।
5: गांव वासियों, तुम्हारी जागरूकता ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, जहाँ शौचालय का निरंतर उपयोग और सही तरीके से रखरखाव होता है, जहाँ जैविक सूखे और प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन होता है, वही रहती हूँ मैं स्वच्छ का।
1: अब गांव में हर घर हर गली में स्वच्छता का जन आंदोलन फिर से खड़ा हुआ है।

0: स्वच्छिका की यह चमक है, मेरी गंदगी को निगल रही है, मेरी बीमारियों का साया खत्म होता जा रहा है, सुजल की बातें, लोगों की आदतें बदल रही है। अब मैं कहाँ जाऊं? अब मेरा ठिकाना कहाँ होगा? शौचालय का नियमित रूप से रख रखाव भी हो रहा है, नाली साफ कर दी, अब मैं कहाँ जाऊं? घर पर ही कूड़े कचरे निपटान हो रहा है, घर का गंदा जल घर के किचन गार्डन में सोखता गड्ढा में ही प्रयोग हो रहा है, मैं क्या करूं?
1: स्वच्छिका, सुजल कुमार और गांव वाले मिलकर रैली निकालते हैं, सब मिलकर नारा लगा रहे हैं। सुजल की बातों को गांव वालों ने दोहराया है, खुले में शौच को ना कहो,
2: बीमारी को दूर भगाओ,
1: शौचालय साफ रखो,
2: स्वच्छ गांव बनाओ,
1: अपना कूड़ा कचरा करो सही निपटान,
2: तभी बढ़ेगी गांव की शान।
1: दूषिका थक कर गांव की सीमा पर बैठ कर रो रही है।
0: मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम सब सच में बदल सकते हो। तुम सब ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान में जन भागीदारी के साथ साथ लोगों की सोच को भी बदला। अब मुझे जाना होगा।
1: गांव की महिलाएं स्वच्छिका को फूलों से सजा रही है, बच्चे नाच रहे हैं।
2: तुम सबकी मेहनत ने दूषिका को हराया, लेकिन याद रखो, अगर सफाई की आदत छूटी तो वो लौट सकती है, इसलिए सफाई को आदत बनाओ, मजबूरी नहीं।
0: अरे अरे गांव वालों, शौचालय में रोज रोज सफाई की क्या जरूरत है? गंदा तो होना ही है ना, एक दिन छोड़ दो क्या फर्क पड़ता है? गांव में कूड़ा कचरा फैलने दो और जल जमाव भी होने दो ना।
1: फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है दूषिका, गंदे शौचालय और गंदगी से ही बीमारियां बढ़ती है। अगर हमें रोज सफाई करे तो तुम दम तोड़ दोगी।
2: ये दूषिका फिर से गांव में आके हमारा घरों में बीमारी फैलाना चाहती है, देखो तो कैसे भूतनी की तरह हंस रही है। गांव वालों, अब से सफाई को अपनाओ।
0: औरतें ही तो करती है ये साफ सफाई, पुरुष क्यों हाथ लगाए? अब नहीं बोलोगी?
2: सफाई किसी एक का काम नहीं, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। अगर सब मिलकर साफ करें तो किसी पर बोझ नहीं पड़ेगा। और सुनो, सब लोग, शौचालय के प्रयोग के साथ जरूरी है हाथ धोना। शौच के बाद हाथ न धोना बीमारी को न्योता देना है। हाथ साबुन से अच्छे से धोना उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना।
1: हम सब समझ गए हैं दूषिका। दूषिका,
2: अब तुमसे नहीं डरेंगे,
1: शौचालय को साफ रखेंगे और उपयोग करेंगे, हाथ धोएंगे और गांव में स्वच्छता करेंगे।
2: हाँ, जरूर,
1: और हमारा गांव ODF प्लस मॉडल बनाएंगे, तुम्हें दूर भगाएंगे।
0: ओह, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो?
2: नहीं दूषिका, हम उनको सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, सूखा और गीला कचरा को सही तरीके से निपटान करें, गंदला जल के लिए सोखता गड्ढा और सही तरीके से नालियों का निर्माण, साथ ही रखरखाव किया जाए, प्लास्टिक की थैली का उपयोग न करें, मलिय कचरा प्रबंधन के लिए गांव के आसपास FSTP बनाएं या पास के शहरी FSTP या STP में जुड़े।
1: गांव रामदेवाड़ी अब नहीं रहा पहले जैसा, हर घर में शौचालय है, लोग कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हैं और में जल जमाव नहीं हो रहा है, बच्चे बीमार नहीं होते, महिलाएं सुरक्षित है और दूषिका हार चुकी है। ये है असली स्वच्छ सुजल गांव की तस्वीर।
3: स्वच्छ भारत का सपना है,
1: हर गली में स्वच्छता है,
3: शौचालय की जिम्मेदारी,
1: हर दिल की अब तैयारी।
4: सुजल स्वच्छ गांव, सुजल स्वच्छ भारत,
1: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही है नए भारत की पहचान।
2: मजा आ गया ना? हमारे कैरेक्टर स्वच्छिका सुजल कुमार को लेकर रामदेववाड़ी गांव में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में हुई कमी को लेकर इस तरह का नाटक खेला जा रहा है। इस रेडियो कार्यक्रम के अलावा और लोग इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जन आंदोलन के जरिए बता भी रहे हैं कि ये मिशन भारत की प्रगति में योगदान दे रहा है। आइए संदर्भ में एक स्वच्छाग्रही से की गई बातचीत सुनते हैं।
1: स्वच्छाग्रही ये कौन होते हैं?
2: स्वच्छाग्रही वे व्यक्ति होते हैं जो स्वच्छता के प्रति गांव में जागरूकता फैलाने और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग स्वच्छता को बढ़ावा देने और समुदाय में स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए काम करते हैं। ऐसे ही एक स्वच्छाग्रही अब हमारे साथ है। श्रोते हो नमस्कार, आपण ऐकताय आमचा विशेष कार्यक्रम। आज आमच्या सोबत आहेत गावाचे स्वच्छाग्रही श्री गणेश पाटील सर। गणेशजी तुमचं स्वागत आहे।
4: नमस्कार मॅम।
2: नमस्कार।
4: माझ्याकडून आणि माझ्या गावातील सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने सर्व श्रोत्यांचे मनःपूर्वक नमस्कार।
2: नमस्कार। गणेशजी सगळ्यात आधी मला सांगा ना, एक स्वच्छाग्रही आपण गावात काय काय काम करता?
4: आमचे काम फक्त गावाची स्वच्छता करणे एवढेच नाही तर प्रत्येकांमध्ये स्वच्छताची सवय निर्माण करणे हे तितकं महत्वाचे आहे। आम्ही घरोघरी जाऊन नागरिकांशी संवाद साधतो, मुलांना हात स्वच्छ धुण्याची सवय, शौचालयाचे नियमित वापर आणि कचरा एकत्र न टाकता योग्य ठिकाणी टाकण्याचे मार्गदर्शन करतो, वेळोवेळी स्वच्छता मोहीम राबवतो आणि ग्रामपंचायतच्या सहकार्याने गाव स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न करतो।
2: वा वा, पण या सगळ्यासाठी गावातील लोकांचा सहभाग आणि प्रतिसाद कसा मिळतो?
4: सुरुवातीला लोकांना समजावून सांगण्यासाठी थोडे कष्ट सहन करावे लागले।
2: बर।
4: परंतु आता परिस्थिती खूप बदलली आहे। महिला, युवक आणि शाळेतील विद्यार्थी स्वच्छता मोहिमेत मोठ्या उत्साहाने भाग घेतात। जेव्हा संपूर्ण गाव एकत्र येते तेव्हा काम अधिक सोपे आणि प्रभावी होते।
2: बर। मला सांगा ना गणेशजी, की तुमच्या गावागावामध्ये शौचालय आहे आणि त्याचा उपयोग होतोय का?
4: हो, आमच्या गावातील जवळपास सर्व घरांमध्ये शौचालयाची सुविधा उपलब्ध आहे। सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे आता बहुतांश ग्रामस्थ उघड्यावर शौचालय न जाता शौचालयाचा वापर करतात, त्यामुळे गाव स्वच्छ राहते आणि अनेक आजारांपासून संरक्षण मिळते।
2: अच्छा अच्छा, गावातील कचरा प्रबंधनासाठी काय व्यवस्था करण्यात आलेली आहे?
4: आम्ही ग्रामस्थांना ओला आणि सुका कचरा वेगळा ठेवण्याबाबत जागरूक करतो, सेंद्रिय कचऱ्यांपासून खत करण्यासाठी प्रोत्साहन देतो, नाल्याची नियमित स्वच्छता, सांडपाण्याची योग्य निचरा आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता यावरही विशेष भर दिला जातो। प्रत्येक कुटुंबाची आणि आपली जबाबदारी पार पडली म्हणून आपले गाव कायम स्वच्छ आणि सुंदर राहील।
2: वा वा, आणि शेवटी जाता जाता गणेशजी गावकऱ्यांसाठी तुम्ही काय सांगाल, काय संदेश द्याल?
4: माझी सर्व ग्रामस्थांना एकच विनंती आहे की स्वच्छता ही एक दिवसाची मोहीम नसून ती आपल्या रोजच्या जीवनशैलीचा भाग असली पाहिजे। आपले घर, अंगण, रस्ता आणि परिसर स्वच्छ ठेवा, शौचालयाचा नियमित वापर करा, कचरा योग्य ठिकाणी टाका व इतरांना स्वच्छतेसाठी प्रेरित करा। स्वच्छ गाव निरोगी, सुंदर, समृद्ध गावची खरी ओळख होते।
2: बरोबर बरोबर, खूप खूप धन्यवाद गणेशजी, तुमची जी माहिती दिली आपण ती खूप महत्वाची माहिती आम्हाला सर्वांना दिली आणि आम्हाला विश्वास आहे की तुमचे विचार सगळ्यांना स्वच्छतेसाठी प्रेरित करतीलच। धन्यवाद। धन्यवाद सर।
5: सुनते रहिए रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: सही कह रही हो स्वच्छिका, मैं जब छोटा था ना गांव के स्कूल में जाता था तो वहां पर हमारे गुरुजी हमको स्वच्छता की बहुत सारी छोटी छोटी बातें सिखाते थे और बाल मन में पड़े हुए प्रभाव के बाद आज मैं सक्रिय होकर इस आंदोलन में सहयोग दे रहा हूँ।
2: ओ, तुम गांव के स्कूल में ही पढ़े हो?
1: हाँ, मेरी सारी शुरुआती शिक्षा गांव में ही हुई है और इसीलिए मैं स्वच्छ भारत अभियान मिशन ग्रामीण के लक्ष्य पर एक स्वच्छाग्रही की तरह काम कर रहा हूँ। स्वच्छता को हम सबका स्वभाव और संस्कार बनाने में और बनाए रखने में और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
2: एक बात और, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की ये योजना हर स्तर, राज्य, जिला और ग्रामीण पर स्वच्छता समितियों का गठन कर स्वच्छता का कार्य सुनिश्चित किया जाता है तथा ग्राम स्तर की जल एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता संबंधी काम जैसे शौचालय निर्माण, व्यवहार परिवर्तन अभियान और ODF प्लस मॉडल सत्यापन की तैयारी जैसे कई दायित्वों का निर्वहन करती है।
1: बस बस, मैं सब समझ गया। तुमको बताओ, वह किरण दीदी जो अभी आई थी ना हमारे नुक्कड़ नाटक में,
2: जी जी हाँ हाँ,
1: वह भी ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समिति की सदस्य है।
2: मैं सब समझ गई।

0: अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की ओर जहां पर श्रोता साथियों के नाम होते हैं, प्रश्न हमारे उनके जवाब होते हैं। तो पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने स्वच्छ गांव के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन हमने भेजने को तो कहा था।
1: तो क्या कुछ अच्छे स्लोगन आए हैं?
0: बिल्कुल आए हैं स्वच्छिका, और उसमें से हमने 3 अच्छे स्लोगन छाट भी लिए हैं। सुनते हैं उन श्रोता के नाम और उनके भेजे गए स्लोगन। करण पाटिल, जो कि जलगांव के ग्रामीण भाग से है, उन्होंने पहला उनका स्लोगन है, स्वच्छ गांव स्वच्छ जीवन, यही है खुशहाली का सच्चा कारण।
1: वाह वाह।
0: और दूसरा जो स्लोगन है वो भेजा है प्राजक्ता बहिरम ने, और वो अमल ने ऐसे लिखती है, और स्लोगन है, घर घर का हो एक ही नारा, स्वच्छ और सुंदर हो गांव हमारा।
1: क्या बात है।
0: और तीसरा स्लोगन है जो कि है ग्रीष्मा पाठक नशीराबाद से, उन्होंने भेजा है, कचरा डिब्बे में डाले सभी, स्वच्छ गांव की जिम्मेदारी निभाए सभी।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छे। वाह, ये तो बड़ा अच्छे अच्छे स्लोगन लिखकर भेजे हैं। हमारे श्रोताओं को बधाई और धन्यवाद।
0: और अब इस अंक का सवाल, गीला कचरा और सूखा कचरा की श्रेणी में किन किन चीजों को रखा जाता है, और उन्हें रखने के लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं?
1: तो भेजिए जल्दी से जवाब। सही जवाब भेजने वालों के नाम शामिल होंगे अगले अंक में। हमारा नंबर है 9284994933।
0: चलने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और भी बताएंगे, और वह आप जानते हैं कि हम आपको क्या बताएंगे। आज आप सुन रहे हैं स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हमने चर्चा की है कि हम अपने शौचालय का रखरखाव और उसकी साफ सफाई कैसे रखेंगे, ठोस और तरल अपरिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक।
1: और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे हर घर जल कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के संदर्भ में जानकारी।
0: क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन में जल उत्सव या जल अर्पण दिवस क्या होता है? इस जानकारी के साथ ही जल जीवन मिशन के जारी होने से पहले लॉन्च और अब तक के कवरेज सहित मिशन के बारे में, नल जल कलेक्शन की उपलब्धियां, जल परीक्षण में महिलाओं की भूमिका, मिशन के घटक आदि के बारे में अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।
1: अब आप अपने प्रश्न का जवाब हमको भेजिए। अपने गांव में शौचालय के रखरखाव पर के प्रति नजर रखिए, लोगों को बताइए, खुश रहिए, स्वच्छ रहिए, प्लास्टिक के थैले को उपयोग न करें, यत्र तत्र कूड़ा न फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में डाले, स्वच्छता फैलाइए और अपने देश को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ भारत सुंदर भारत
0: कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा रेडियो, रेडियो मनभावन 90.8 FM। फिलहाल स्वच्छिका और सुजल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार श्रोते हो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एफएम बैंड 90